عليه

कारकर्दगी जे नाले ते सिंध जी वधत ते चसर कंदो त पोए ॾिसो सिंध जा माण्हू तव्हांखे कहिड़ो था जवाब ॾियनि। सिंध जी वधत जे मामले ते असांखे वेहण जी ज़रूरत ई न पवंदी, सिंध वासी पाण ई तव्हांखे जवाबु ॾींदा। सरदार शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार शाह चयो त हामिद मीर खां ॼाणी बाणी या अणॼाणी में जेका ग़लती थी आहे उन ते खेसि माज़रत करणु घुरिजे। सभिनी खे स्कूलनि मां ॿाहिरि रुगो सिंध जा ॿार नज़र अचनि था। पंजाब में 1 करोड़ ॿार स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में 50 लख ॿार स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि, पर उहे कंहिंखे नज़र नथा अचनि, रुगो सिंध नज़र पई अचे। सूबे वज़ीर जाम ख़ान छोरे चयो आहे त सिंध जी कारकर्दगी खां पोइ हाणे ही सिंध जे शहीदनि ऐं वधत ते बि तनक़ीद करणु शुरू करे छॾी आहे। सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी जी रिथ पेश करण सां MQM PTI जमायत इस्लामी वारा वाइखा थी विया। फंक्शनल लीग ॿारनि जो सिंध जी वधत ते को चिटो मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे। सिंध में को ॿार गटर में किरे थो त मेयर सॼी सरकार ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत खे ज़िमेवार क़रार ॾिनो वञे थो। के ॿिए सूबे में ॿार गटर में किरंदो त उन जी ज़िमेवारी रुॻो इंतिज़ामिया ते हूंदी, ॻाल्हि सूबे ताईं न पहुचंदी।

बदकिस्मती सां फारम सतेत अली जी पैदावार वफाकी वज़ीर राणी तरमीम ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। किराती भेंडेट ते आयल माण्हू क़ौम जो फ़ैसिलो नथा करे सघनि। शर्जील मेमन जो सिंधी असेंबली में ख़िताब, सीनियर सूबाई वज़ीर चयो त वफाकी हुकूमत पंहिंजो निज़ाम सही न पई करे सघे ऐं पोइ सिंध खे निशानो बणायो वञे थो। पाणी, गैस, बिजली ऐं मोटरवेज में सिंध सां ज़्यादती थी रही आहे। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त वफाकी हुकूमत में वेठल अमलदारनि ऐं वज़ीरनि खे अलाए छो सिंध जा माण्हू नज़र ई नथा अचनि। बिजली, गैस ऐं पाणी जे मसइलनि ते वफ़ाक़ी ख़त लिखिया आहिनि पर पोइ बि तदारक न कयो वियो। हैरतपुर, सखर ऐं घोटकी में चारि चारि ॾींहं बिजली नाहे। भली 15 ॾींहं बिजली न हुजे पर बिल साॻियो थो अचे। स्पीकर अवेस कादर शाह जी शर्जील नामे मुंहिंजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसइला उथारण जी हिदायत।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.8।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़। आप सुन रहे थे

0: सगे तो फुलजी स्टेशन भरसा स्कूल की इमारत जबून हाल होने खिलाफ गोठाणन जो एतराज गोठ कमाल पवर के प्राइमरी स्कूल की इमारत जबून होजन सबब शागिर्द उसमें पढ़ने लगा गोठाणन ने शागिर्दन जो चवण है स्कूल की इमारत जबून हाल थी हंधा हंधा डरी पई है कमरन की छित जा चापुड़ किरण सबब केतरा ही भेरा शागिर्द जख्मी थे मुतबादल जगह डेई स्कूल की इमारत डाराए नई इमारत ठहराए डी वे बाहो खोसो वेझो अण जा तल हथियार बंधन गोधो वाह वट कायम पुलिस पिकेट ड्राए छी गोधो वाह वट डोहारनि जी अचवन जे अहम लंग सबब पुलिस पिकेट कायम कई वई हुई अण जा तल हथियार बंधन रात जे वक्त पुलिस पिकेट के ड्राए पट करे छो पुलिस जो चवण है जवाबदारनि जी सुञाणप ऐं गिरफ़्तारी लाइ कोशिशूं जारी आहिनि खेन गिरफ़्तार कयो वेंदो
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले
2: जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़ रॉयल इन्वर्टर

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सुनिए,

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

Pura puro,

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुनते हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं
2: GFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

रहे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

परचेज कर देते हैं और उस वजह से ये भी सीन हो जाता है. अच्छा नहीं, ये सारे सीन मैं क्यों बताऊँ आप लोगों को, आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या हो जाता है जब आप बिना देखे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं. तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मुझे बताइएगा जल्दी से. और आप मुझे ये बताइए कि जब आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर आप क्या चेक करते हैं. अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं या फिर आप घूमने वाले लिसनर से, तो जनाब अपनी खामोशी को तोड़ लीजिए और ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर. और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती. अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब. आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा. जल्दी से हमारे पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. हमें बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बताइएगा. और उसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर इतने सारे लोग हैं जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि सबसे पहली बात तो ये है जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है. और मेडिकेटेड फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है जनाब कि जो आपकी स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, वो उनकी निगरानी के अंदर प्रोडक्ट तैयार किया गया है. अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जो नाइट क्रीमें होती हैं, ब्यूटी क्रीमें होती हैं, इनके अंदर भर भर के केमिकल डाले जाते हैं, हमारी स्किन खराब हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई भी सी नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार गया प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है और ये जनाब आपको ऐसा निखार देने वाले हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपको ऐसी खूबसूरती मिलेगी जो कि आप महंगे महंगे से फेशियल्स कराते हैं ना तब भी आपको नहीं मिलते. तो अगर आप बचना चाहते हैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने से या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप भाई बैठकर घंटों अपनी स्किन केयर करते रहें, तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें और अपना वक्त भी बचाएं, पैसा भी बचाएं और अपनी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं. तो जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. बाकी बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ ना मैं करती रहूंगी. पूरा प्रोग्राम भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डेडिकेट किया जा रहा है. अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाते जाइए. आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए. और जी आप मुझे बताने वाले कि जब आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आप सबसे पहले क्या देखते हैं. ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करेंगे तो उसके ऊपर तो इतनी खूबसूरत डॉक्टर की फोटो लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि जब भी कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज करेगा ना तो उसकी डायरेक्ट जो नजरें हैं ना वो इस डॉक्टर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत हो चुकी है. क्या पता ये भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती हो. तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि आपको भी वो वाली खूबसूरती मिले जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं. ओके जी, बिल्कुल यहाँ पर आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं. मैसेजेस भी आप हमें कर सकते हैं, आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं और इस तरीके कार को फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं. तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए. और जो आज हमारे साथ नए नए लोग कनेक्ट हो चुके हैं उन नए नए लोगों को भी वेलकम करते हैं. नए नए लोग भी हमें 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करें. भाई अपनी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये पोस्ट मेरी नहीं, ये आप लोगों की पोस्ट है. तो जल्दी से अपनी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता पाएंगे भाई आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन.

बाकी से लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करने में कंजूसियां करते हैं ना, ऐसा ना किया करें भाई, ऐसा नहीं किया करें। पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, इससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों तक हमारी पोस्ट जो ना वो पहुंच पाती है। तो पोस्ट को पहुंचाइए जितने भी लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं। बाकी मेरे पास एक प्यारा सा गाना है, गाना भी साथ साथ सुनते हैं। आप क्या कह रहे हैं, आपके फीडबैक्स की जाने भी आते हैं।

आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को जरा वेलकम कीजिए। अच्छा, यहाँ पर शेर खान जतोई हमारे साथ हैं, बको देरो बागरानी से कहते हैं अबूजर जतोई, अबूजर जतोई और समीना जतोई और शांजे जतोई, अदी किया आये हो सदरा माँ ठीक है ताब उदा किया सवा ठीक ठाक मजे में, और शिराज अली मला हमारे साथ पुरानो ओके आपका ये मेरे ख्याल में गांव है। कहते हैं सलाम जी, हमें फायजा का गाना तो सुनाइएगा, डेडिकेट आशिक अली मल्हा रहमान मल्हा के नाम। ओके जी, ओके आई ट्राई। और शहजाद अली राजपर हमारे साथ है फ्रॉम बसीरो ताल का फेजगंज, प्रोग्राम इज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच शहजाद, आपको वेलकम कहा जाता है। और महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, FM प्रोग्राम की रानी सिद्रा मुस्कान वेलकम, क्या हाल चाल है आपका सिस्टर? जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं बहुत खुशी होती है, ये पता नहीं क्यों, और जब आप प्रोग्राम करती हैं और हंसती हैं और ओहो बोलती हैं क्या ही बात है, और हंसती हंसती जलाल को तो प्ले करो, सो नाइस ऑफ यू सिद्रा मुस्कान, हमेशा गुलाब के गुल की तरह। भाइयों की दुआएं हैं जी, बहुत शुक्रिया। वैसे आप डी स्किन ब्यूटी कर रहे हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं अवेलेबल तो मैं प्रोग्राम में आपको नंबर्स बता दी रहूंगी, जिनके ऊपर आप राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल भी करा सकते हैं। क्या बात है। ओके जी, अनवर अली भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तपती हुई धूप में एक ठंडी सी हवा हो हमारी तरफ से आलाम हो, और सूरज की तपश है तेज और चलती है गर्म हवा, खुश रहे आप सदा, दिल से है ये दुआ, जहाँ मोहब्बत का पैगाम लाता है, तपती हुई राहों में छाँव का एहसास हो आप, दोपहर के इस लम्हे में भी सलामत हो आप। क्या मतलब, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम कहते हमारे प्यारे अनवर भाई जान। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताएं, इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक नहीं किया भाई, लाइक भी कर दिया करें, ये भी आप लोगों का काम होता है। और यासीन खंड हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अली खोसू हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मटियारी का तमाम से न्यू प्रोग्राम ज्वाइन करवा है, प्रोग्राम तो पसंद अच्छी पड़े, थैंक यू मोहब्बतू एंड भावनजू। यासीन कहते नहीं लखरोड में हूँ, नहीं कराची में हूँ, अभी तो मैंने थर वसाया है, थर क्यों वसाया है आपने, और मुझे बताएं आपके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो गई या फिर अभी तक रहती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मुझे ये लगता है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अवेलेबल होगी तो आपको परचेज करने में आसानी हो सकती है। तो कैसे आप अवेलेबल करा सकते हैं, मैं जरा वापस आकर आपको बताती हूँ, यहाँ पर टाइम हुआ जाता है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ली जाए, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: This time check is brought to you by
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
3: जिसकी फजाओं में

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

वैसे भी अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो मुझसे भी तकरीबन लोग पूछते हैं कि भाई आप बताएं हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, शादियों का सीजन है, हमारे घर में शादियां हो रही हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके पास कोई अच्छा कोई सेफ प्रोडक्ट होना चाहिए जो लगाएं आप तो आपको खूबसूरती भी मिले और आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहे, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है। और जनाब इसका क्या काम होता है, ये इनका काम होता है कि जब आप अपने चेहरे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है वो आपकी स्किन के अंदर तक जाते हैं, आपकी स्किन की इस तरह हिफाजत करते हैं, आपके चेहरे को निखार देते हैं और ऐसा आपके चेहरे पर निखार आएगा जो कि आप लोगों को महंगे महंगे फेशियल से भी नहीं आता। तो जो खवातीन हमें सुन रही हैं या फिर मर्द हजरात हमें सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप खवातीन ही इस्तेमाल करेंगी, भाई जान इसे आप लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लड़के भी लगाइए, एजड लोग जो है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा उम्र हो जाती है तो आपके चेहरे पर ज्यादा रिंकल्स भी आ जाते हैं, तो रिंकल्स को खत्म करने के लिए भी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा की रूटीन में आपने शामिल करना है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा और आपकी स्किन साफ सुथरी और अच्छी तरह से जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपकी शख्सियत में जो है वो ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो फिर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में इस्तेमाल कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के तरीकेकार बिल्कुल आसान से है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ मार्केट में डी स्किन फेस वॉश भी अवेलेबल है। अगर आप अच्छा सा फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश आप लगा सकते हैं। अगर आप मार्केट जाएं तो डी स्किन का फेस वॉश भी आप मालूम कराइएगा, परचेज करिएगा, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप परचेज करके आ रहे हैं तो सबसे पहले रात के टाइम आप अपना फेस वॉश कीजिए, डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, उसके बाद सुखाने के बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम रात के टाइम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, आराम से लगाइए, प्यार से लगाइए, मोहब्बत से लगाइए, ताकि भाई आपके चेहरे पर जो निखार आए, रिजल्ट्स आए, वो भी मोहब्बत के साथ आए। तो कहते हैं ना, मोहब्बत अगर आप किसी भी चीज में शामिल करते हैं, चाहे खाने में हो या फिर प्रोडक्ट लगाने में हो, तो मोहब्बत का असर बिल्कुल होता है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं तो मोहब्बत से लगाइएगा ताकि आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिले। और इसी तरीके कार को जब आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन जाने आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट मिलते रहेंगे। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। और यही बात है कि आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या करें भाई, कौन से पैसे लगते हैं, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको गाने सुनाऊंगी, लेकिन हाँ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है वो भी जरा दोबारा आप लोगों को बताते जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है। तो आज के प्रोग्राम का मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि अगर आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उससे सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज चेक करते हैं, ऐसी क्या आपकी आदत है कि आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कौन सी चीज सबसे पहले आप देखते हैं, नोटिस करते हैं, ये आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है। और आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि सिद्रा आप कितना ज्यादा बोलती हैं जो कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि हाँ वाकई में बहुत ज्यादा बोलती हूँ। चलें फिर बातों को जरा ब्रेक लगाते हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा सा गाना लगाते हैं और गाना साथ साथ सुनते रहेंगे। और आप लोग क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, आप ऐसा कीजिए जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की नहीं, या फिर सिर्फ आप सुनने वाले और घुनने वाले लिसनर से मत करिए ऐसा। जल्दी हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनिए और बताइए आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं और वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही

0: सभिनी खे ॿुधायो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में इन आहे ऐं तव्हां वेंदा त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हांजे ॻोठनि में तव्हांजे कंहिं बि सिटी में रहियल आहे न त तव्हां पाण बि अवेलेबल कराए सघो था ओके जी सो अचूं था तव्हांजे मैसेज जी तरफ़ ऐं मैसेज खोड़ सारा तव्हांजा जमा थी चुका आहिनि सो हिते असांखे ज्वाइन कयो आहे अख़लाक बलोच भाई कंहिं ते आंसर डेट देखते हैं क्या बात है जी क्या बात है और मोहम्मद अली खोसो हमें सुन रहे थे प्रोग्राम खूबसूरत है आपका सलाम अयूब भट्टी और बाबल खोसो को दीजिएगा ओके जी और यासीन कहते हैं हम गरीबों को शमन मिराली का गाना लाजमी सुना देना बिल्कुल जी सुनाएंगे आप तसल्ली रखिए और फहीम शेख हमारे साथ कहते सलाम याली मदद मुलाल इस्लाम मदद इन वालेकुम अस्सलाम कहते अदा चाह लाए खुश आयो सफा चाक स्लेट कलम सब सब तां बुधायो और इनखा अलावा हिदायतुल्ला कहते अस्सलाम वालेकुम कैसी हो मुस्कान ये सॉन्ग चलाना आपका गाना यकीन करिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया तो थोड़ा इसका ना वजाहत के साथ लिखिए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं फिर आपका गाना लगा देंगे और रमजान अली हमें सुन रहे कहते सलाम बेना कैसी ये शो में आपको वेलकम कहते हैं सॉन्ग सुनाए प्लीज वाहिद बख्श की आवाज में मां कोशिश कयां थी तव्हां भाइरनि जो गाना जो फरमाइश न उन्हनि खे लॻायूं था ठीकु आहे और अखलाक भाई कहते हैं कि हाँ पहले हम मरे हुए थे फिर आप आई फिर हम जिंदा हो गए
1: बच्चा
0: ना करे
1: इसका है बच्चा अन्ना बना सजी दुनिया अन्ना बना सजी दुनिया
0: अच्छा यासीन खान डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल है मार्केट में तो आप डी स्किन का फेस वॉश परचेज कर सकते हैं और फहीम कहते हैं भाऊ कराची क्लिफ्टन से आपका शो सुन रहा हूँ लारकना की चिंचियाँ आप देखो मैं तो रोज ही देखती हूँ और इतना देख चुकी हूँ कि बड़ी बेजार हो चुकी हूँ अच्छा उनका अलावा महर इरफान सियाल साहब हमें सुन रहे हैं कहते हैं ग्रेट हॉस्टिंग नेम आशी थैंक यू वेरी मच हमारे सर आपको वेलकम कहते हैं और उसके अलावा जी बख्त अली सियाल भाई हमारे साथ हैं आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है और शहबाज हमें सुन रहे हैं हाय जी हेलो और जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक नहीं किया जल्दी से कर दें लाइक करने में कौन से आपके पैसे जाएंगे अच्छा ये फरवा गुल हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे थैंक यू वेरी मच फरवा कहती है टॉपिक पहले क्रीम का नाम चेक करती हूँ अच्छा ये अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छा फहीम भाई लिखते हैं कि बिना दिल जिया सी तो छा थी पयो थी पत्थर वया सी तो छा थी पयो जडहें खिल खुशी मोकलाए वही झुकिया सी जुड़िया सी तो छा थी पयो अच्छा थोरो जेको अॻियां उहो आहे थोरा चवंदा आहिनि त या न पढ़ो हिन करे न पढ़ंदासीं सो थैंक यू सो मच प्यारा भाउ तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम कॾहिं इस्तेमालु कंदा ॿुधायो त वरी चओ था दादा डी स्किन ब्यूटी क्रीम कराची क्लिफ्टन में कहां मिलेगी अब ये आप वहां जाइए मालूमात लीजिए कहां कहां पर अवेलेबल है अगर नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रही हूं ना उनके ऊपर रابطہ कीजिएगा

फरवा की थी यहाँ पे ये पोइट्री है, मोहब्बत की सजा कुछ यूँ मिली हमको, खुद से बिखर कर भी तेरे ही रहे हम। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। और अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, अब्दुल रजाक मोहम्मद खान कुंभर मुश्ताक कुंभर हली पोटो स्टाफ खान तहां असांखे ज्वाइन कयो आहे, सो मोहब्बतूं आहिनि तव्हां जूं। और जी मुजाहिद राजस्थानी हमारे साथ ही कहते हैं माशाल्लाह यू शो, थैंक यू। बिल्कुल जी, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में मिली रही आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त असां सां शेयर कयो। बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि बि आहे, अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वञो था, जी फरवा असांखे चयो त मां जॾहिं प्रोडक्ट परचेज कंदी आहियां त मां हुनजो नालो ॾिसंदी आहियां, त बिल्कुल जॾहिं तव्हां कोई बि प्रोडक्ट परचेज कंदा त तव्हां लॻंदो आहे त तव्हां हुन प्रोडक्ट ते जेको मॉडल जो फोटो हूंदो आहे न उहो ॾिसंदा हूंदा। पर तव्हां अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वञो था ऐं तव्हां ॾिसंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको डबी आहे न उन ते हिकु डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, ऐं इहा बि हिकिड़ी निशानी तौरु मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां थी, अगरि तव्हां दुकानदार खां वठो त हू तव्हांखे जहिड़ी तहिड़ी क्रीम न पकड़ाए छॾे, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी नॉलेज हुजे त बाबा असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण वञूं था त कहिड़ी आहे कीअं आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डबी ते हिकु डॉक्टर माइक जो फोटो लॻियल आहे, इन मां इहा ॻाल्हि साबित खोले

0: खूबसूरती जो कमाल आहे खूबसूरती तव्हांखे तॾहिं मिलंदी जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसंदा। ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ ही हमारी फजली के थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान। कैसी हो डियर शहजादी? बिल्कुल ठीक हूँ कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ऐसा वैसे तुम्हें क्यों लग रहा है बताओ मुझे जल्दी जल्दी। अच्छा अब्बास महर हमें सुन रहे हैं। अब्बास महर आपको वेलकम कहा जाता है। थैंक यू के साथ आप हमारे साथ हैं। और गोट गुलाब लगा रही खां, साबिर लगा रही, सुल्तान लगा रही, रिजवान लगा रही, वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम कहते हैं शो में। कहते हैं आपका शो बहुत नाइस है। और सुरिया सुमरो का आपने गाना बोला है जो कि हम लगाने की कोशिश करेंगे। मजहर अली तुनियो में सुन रहे थे। अदी सिद्रा सॉन्ग बिल्कुल आपका गाना भी लगाते हैं। और हमारे साथ है रूबी अली एंड नंडो जमीर अली राजपर फ्रॉम बसीरो। अदी सिद्रा हम आपका प्रोग्राम से सुनते हैं। आज प्ले मुनवर मोलाई हथ मथे क्यासी ढाढो आ ओखी ची ओके बिल्कुल तव्हांजी पसंद जो गानो हलायो था। और कश्मीर से अखलाक भाई आ तव्हां भी गाने जी फरमाइश कई आहे। ऐं छा था चओ डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइस आहे। बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइस आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे घर में केर केर इस्तेमाल करी पियो या केर चए थो त बाबा मूंखे वठी आणे ॾियो। छो त कुझु ख़वातीन अहिड़ी हूंदा आहिनि जेके बाबा मार्केट न वञी सघंदियूं आहिनि, उन्हनि खे वरी थोरो इलाज करणो पवंदो आहे घर जे मर्दनि खे। अगरि तव्हांजो भेनर, तव्हांजो वाइफ ऐं तव्हांजो अमड़ियूं तव्हांखे चवनि त बाबा असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आणे ॾियो त हुनखे वठी आणे ॾिजो। इहे नखरा न कंदा कयो। सो जेकी जेकी असांखे ॿुधनि पिया सभु माण्हू तव्हां पंहिंजे घर में सभिनीनि खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी ॾियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसो। तव्हांखे यकीन ॾाढी पसंदि ईंदी। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे। इलाही सारा कमालात आहिनि। बिल्कुल सॼी प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदासीं। पर हिते टाइम थियो आहे, वेठूं था बाबा न्यूज़ ब्रेक, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा। वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं। तव्हां काॾे न वञो, हिते वेठा हुजो। मां ओही वञी ओही मोटा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diyan Jo Show. A product by Biocon International Pakistan.
3: तहजीब व सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का सास। GAFM 88 की आवाज।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

जारी वकील जिब्रान नासिर के सवाल से एडवोकेट जनरल की मुदाखलत कमीशन एडवोकेट जनरल की मुदाखलत से वरू वजीर जिया लंजार के नोटिस जारी करने की हिदायत कर छी। कमीशन सरबराह जस्टिस उमर सियाल एडवोकेट जनरल के मुखातिब थीदे तो सिंध हुकूमत तरफा अव छो परेशान आयो। फरियाद टालपुर खानदान के मुतमिन करण अदालती कमीशन जोड़ो वे जैसे खानदान जहा कुछ सवाल है।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मामले के आईनी बोहरान सा भेंट दई छी। अटॉर्नी जनरल के नोटिस जारी, बुधड़ी लाल लार्जर बेंच जोड़ने जो फैसलो। अदालत चई सूबन के आईजी एडवोकेट जनरल के भी

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तहजीब सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: आज पहले शहर सखर आई रोड़ी में
4: जिना अस्पताल कराची जो तरबियती आफ्ताब
3: आई टीबी अस्पताल खैरपुर जो मशहूर
4: एलर्जी दमो टीबी फिफड़न आई छाती जी मुख्तलिफ बीमारियों जो माहिर
3: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: सिंध के माथे का झूमर
7: GFM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्र आपके साथ मौजूद है. और मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और जनाब अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे. और इसी के साथ साथ अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से बताइए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में थोड़ी सी ऐसे नॉलेज होनी चाहिए ना आप लोगों को भी, कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं तो भाई आप क्यों इस्तेमाल करेंगे. क्योंकि कई मरतबा ऐसा वाला सीन हो जाता है कि बहुत सारे लोग बेचारे बड़े मासूम होते हैं जिनको बस दुकानदार कोई भी चीज पकड़ा देता है तो वो आ जाते हैं, बस वो कहते हैं कि हाँ जी दुकानदार ने दी है तो अच्छी ही होगी. लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं होता कि वो किस स्किन के लिए है, किस तरह का वो प्रोडक्ट है. अगर आपको नॉलेज नहीं होगी ना तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है. हम ये चाहते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने उस प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करना है और क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी. अगर खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए ये तो हो ही नहीं सकता ना. आजकल हर कोई चाहता है कि भाई उसकी जिल्द साफ हो, सुथरी हो, नरम और फ्रेश महसूस होनी चाहिए. लेकिन उसके लिए सिर्फ खूबसूरती खूबसूरत नजर आना ये काफी नहीं होता, बल्कि अपनी स्किन को रोजाना वक्त देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. और हम इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते कि भाई क्या बार बार फेस वॉश करना, क्या रात को फेस वॉश करके सोना. कुछ लोगों को तो ये लगता है कि भाई अगर हम रात को फेस वॉश नहीं करके सोएंगे तो क्या ही हो जाएगा. लेकिन रात को फेस वॉश अगर आप नहीं करते हैं और वो ये आपकी आदत कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक चलती आ रही है, लेकिन आप रात को फेस वॉश नहीं करके सोते हैं तो यकीन जाने इसका असर आगे जाकर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा आएगा. और खास करके उन लोगों की स्किन के लिए जिनके चेहरे पर ना बहुत ज्यादा ऑयल जमा हो जाता है, स्किन सेंसिटिव है, ऑयली स्किन है या फिर एक्नी वाला चेहरा है. जनाब जिन लोगों की स्किन जो है ना वो थोड़ी सी ऑयली स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी निकल आते हैं तो आपको तो और ज्यादा केयर की जरूरत होती है, आपको तो और ज्यादा केयर करनी चाहिए. इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती आ रही हूँ कि आपने क्या करना है, आप अपनी डेली ब्यूटी रूटीन में शामिल कर दें डी स्किन ब्यूटी क्रीम को. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपनी जल्द को केयर देने के लिए उसे ना अपने रोजमर्रा की स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना लें. सुबह अपनी रूटीन मुकम्मल करते हुए या शाम को आप दिन भर मसरूफियात की वजह से ऐसा होता है कि आप अपनी स्किन केयर नहीं कर पाते हैं. चाहे तो हर किसी को रात का टाइम जो मिलता है ना उसमें थोड़े से आप 10 मिनट अपने लिए निकाले. 10 मिनट तो मुझे लगता है कि ये 10 मिनट भी बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ. इससे भी थोड़ा वक्त और अच्छे से चेहरे को क्लीन करने के चेहरे पर तो अच्छे से अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई है, शामिल की गई है. और इसीलिए शामिल की गई है ताकि आप लोगों की स्किन जो है ना वो बेहतर बन जाए, आपके चेहरे को अच्छा सा प्रोडक्ट मिल जाए और आपको बहुत ज्यादा स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा फेस लाए. जल्दी से ऐड कीजिए और अपनी खूबसूरती का जरा ख्याल

नंबर आहे 0332734399 बुड़ी 332 हाँ जी 3 4

89 बिल्कुल यही नंबर है। तो कि आप डायल करेंगे, अगर एक नंबर बंद होगा या बिजी होगा या नहीं उसके ऊपर आपको रिस्पांस मिले तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से नंबर्स के ऊपर रापता कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर बसानी आप परचेज करते रहिए, क्योंकि दी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जरा टॉपिक को भी फॉलो कर ले। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप अपने लिए कोई भी जब ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस ब्यूटी प्रोडक्ट को परचेज करते साथ ही सबसे पहले उस पे क्या चेक करते हैं, कौन सी चीज है जो कि आप सबसे पहले चेक करते हैं। के साथ साथ अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप लोगों ने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया है, अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। उसके अलावा आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, मैसेजेस शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। बाकी जो लोग मैसेज कहना चाहते लेकिन उनको तरीकेकार नहीं पता, तो आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं जनाब, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है। और जब आप हमारा पेज सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट भी मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। ओके जी, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करना ये आप लोगों का काम होता है, कमेंट भी आप कर दिया करें, क्या ही हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। अच्छा भाई, तो आपके कुछ मैसेजेस की जानब आ जाते हैं जो कि काफी तादाद में जमा हो चुके हैं। आपके मैसेजेस अगर कमेंट्स की जानब आते हैं

अच्छा यासीन खान, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आप इतने टाइम से हमारे साथ मौजूद। और फहीम कहते हैं कि भाऊ संडे वाले दिन हमारे ऑफिस जो है ना वो बंद होते हैं, फिर जाऊंगा विजिट करूंगा, कहाँ मिलती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और मैं डी स्किन का फेस वॉश खरीद करूंगा। चलें जी, आप मालूमात लीजिएगा, वहां पर है तो फिर आप परचेज कीजिएगा, चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें या फिर डी स्किन फेस वॉश परचेज करें। वैसे अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं इस्तेमाल कर पाए तो आप किसी को तोहफा दे सकते हैं, समझ रहे हैं, किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा। अच्छा, मुगल उमरानी हमें सुन रहे हैं, मुगल उमरानी आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच। और वजीर हमारे साथ हैं, वजीर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से, डॉक्टर वजीर अली नाइस यो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहा जाता है। अनवर भाई कहते हैं कि उहे भी के नियम हुआ हाणे जिन के नजर अचन थियूं, हजार खामियों असा में साईं, कदें उहे चवंदा हुआ तो जड़ो कोई ना है अली, यो डटो डींदा हुआ मेरे हरू भरू जाई मानन जी गालन में नहीं था कयो। अच्छा, रमजान भाई कहते हैं मौलाना इस्लाम अदर, मेरी बहन कैसी हो, अल्लाह से आपको आमीन जी आमीन, बस ऐसे ही दुआ दिया करें। और उसके अलावा वजीर भाई बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगाते हैं। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान, मौलाना इस्लाम अदर कहते हैं फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना, शाहिद बबर का कलाम, थैंक यू जी जी, बिल्कुल आपकी पसंद लगाते हैं। और जी हमारे साथ हैं रिजवान अली कहते हैं बहना कैसी हो आप, शो में आपको वेलकम कहता हूँ। और आपने गाने की फरमाइश कर दी है, बिल्कुल जी आपकी पसंद का गाना लगाया जाएगा रिजवान भाई। और चाचा खाले चुनी जो आ चुकी है, अस्सलाम वालेकुम बेटा सिद्धू, हाउ आर यू, हो फाइन, आई एम नॉट गुड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट लिसनिंग योर शो बेटा सिद्धू, आई वाज एडमिटेड। हाँ भाई, वो फहीम भाई ने बताया था, क्या हो गया आपकी तबीयत को इतनी ज्यादा क्यों खराब हो गई है, ख्याल तो आप अपना रखते नहीं है, तो ख्याल रखा करिए और जल्दी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर से हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और वजीर भाई कहते हैं विलेज मोहम्मद अली, जी जी बिल्कुल प्यारे भाई आपको वेलकम कहा जाता है। और इनका अलावा हमारे साथ पैनल पर आते हैं तो कुछ मैसेजेस हैं, लेकिन एक अदद हम गाना भी लगा दी लिस्ट में तो अच्छा रहेगा, तो ये वाला हमारे पास एक गाना है जिसकी फरमाइश

ये किसी भाई ने कर दी थी. तो चलिए जी साथ साथ इस गाने को भी सुनते आए और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. बिलाल अली हमें जान कर चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम जी. गुआ बताएं बिलाल कैसे.

मज़े में आप रेडीज़ स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जो पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो कंजूसी न करना कर। अच्छा ये हमारे साथी साइमा अमीर के लिए अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह ज़हीन आज़े सिद्रो वेलकम फिर से और शो मस्त है वजह यू टॉपिक जीने मरने की डेट और कौन सी हर्बल चीज ऐड की गई है वो सब देखती हूँ क्या बात है जी क्या बात है और कहती है प्लीज प्ले फरीहा परवेज मैं देखती हूँ जी बिल्कुल साइमा अमीर आपकी फरमाइश का गाना भी लगाया जाएगा और आपने सलाम दिया है जी मेरे गांव की प्यारी परियों को ओके जी ओके वैसे गांव की लड़कियां परियां ही होती हैं ऊपर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो क्या बात हो जाएगी हाय हाय हाय सोने पे सुहागा। अच्छा ये हमारे साथ सिद्रा मुस्कान अस्सलाम वालेकुम वलैल इस्लाम अदर बेवस बलोच दरगाह साईं जमाल शाह मोरो से आप कैसी हो आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज नाइस है थैंक यू बहुत शुक्रिया। जो वाला वाला फुल मजे में आयो कौन डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया था कौन अच्छा यासीन खान कहते हैं आज के दौर में किसी पे एतबार नहीं करना बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और सागर अली हमारे साथ कहते हैं बेवस सागर अली बेवस वरी छू बुला या बेवस ही छड़ी जो तां हाने डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सही सुना थी वेंदो

अब्दुल गफार भाई भी हमारे साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। अब्दुल गफार भाई क्या कह रहे हैं? खुश आमदीद जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। नवाब शाह से आप हमारा शो सुन रहे हैं? नहीं, पता नहीं कहाँ से आप हमारा शो सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी होगी, आप जाइए वहाँ से मालूमात लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं बता दिया करें। अगर नहीं मिल रही तो फिर आप क्या करेंगे? आप डायल करेंगे 1200 12 50 95 970। यो नंबर अगर बंद हुजे, मसरूफ हुजे, नए नए तव्हांखे रिस्पॉन्स मिले, त ॿियो बि नंबर आहे जंहिं ते तव्हां रातो करे सघो था। ऐं नंबर आहे 2032 73 84 309। हांजी, सिंधी में नंबर यादि कया आहिनि। अंग्रेजी में नंबर ॿुधाईंदा, असांखे सम्झ में न ईंदो। बाबा तव्हांजे लाइ सिंधी बि ॿुधायां थी हाणे। तव्हां नंबर ते राबितो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। ऐं हाणे गानो हलायो, हथ मथे कयासीं ॾाढो आहे बाबा। हिन गाने जी बि फरमाइश अचो त मिली करे इंजॉय था कयो।

गानो बुधो गाने खां फोरन बादी असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ वञूं था उन खां पोइ जल्दी मोटी तमाड़ी ईंदासीं तव्हां करे ने मुंहिंजो हिते वेठा हुजो पपन बुलो ॿुधो वई मां ओ हीअं वञी ओटांदी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स

क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

बाद है बहुत ही सुंदर सा गाना जो अगर इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से। यहाँ पर आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाने के साथ साथ ये भी बताते जा रहे हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो चुकी है या फिर अभी तक बाकी है। ओके जी, आप बताएं और मैं आपको बताने लगी हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली, 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ साथ मौजूद हूँ। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम इन खुशामदी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। उनके अलावा अगर तुम्हारा पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अवेलेबल कराइन चाहियो था तो तुम जल्दी जल्दी डायल करो 03 12 50

अच्छी आती है जी बा दिल बर बस साउंड अच्छा लग रहा है, बाकी तो एंजॉय करो और क्या। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है, तमाम भी सोना सोना थी वेंदा, तमाम भी हसीन थी वेंदा, तमाम भी

So, आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि जब आप अपने लिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर क्या चीज सबसे पहले आप नोटिस करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे पहले आप देखते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर जो कि आप परचेज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो जो है ना वो हाँ जी नाम देख लेते हैं, कुछ लोग मॉडल की फोटो देख लेते हैं, कुछ लोग देख लेते हैं कि भाई इस क्रीम के अंदर क्या क्या चीज ऐड की गई है, कुछ लोग देखते हैं जी एक्सपायर डेट क्या है क्रीम की प्रोडक्ट की जिस भी चीज की। तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप सबसे पहले क्या चीज नोटिस करते हैं। और ये प्यारा सा गाना हमने लिस्ट में लगा लिया है परिहा परवेज जी की आवाज, आइए मिलकर एंजॉय करते हैं। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डीज़ ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज़।

अपना बना ले, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपना बना ले। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए, अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आप शामिल कीजिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर रूटीन में मजीद जो है ना वो निखार ला देगा, आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देगा और आपकी स्किन साफ सुथरी और अच्छी तरह जो है ना मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। आपकी जल्द की शख्सियत जो है ना, आपकी ऐसा ही होता है ना कि आपकी जो शख्सियत है वो आपकी जल्द से भी बहुत ज्यादा जानी जाती है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि हमारी जल्द जो है वो हमेशा फ्रेश नजर आनी चाहिए, ताजा नजर आनी चाहिए और पुरकशिश नजर आनी चाहिए, नो रिंकल, नो फ्रिकल, नो एक्नी मार्क्स, आपने क्या करना है, आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना मिली तो जो नंबर आपको बता रही हूँ उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा, उन भाई साहब से मालूम लीजिए, भाई साहब क्या करें बताएं तो क्योंकि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो लाजमी परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और हसीन हो जाइए। आजकल फरीहा परवेज के गाने मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ना क्या ही बताऊं, यानी कि ये इतनी ओल्ड सिंगर है तो इसके गाने तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, सारे गाने जो भी उठा ले एक एक गाना इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया, लेकिन हाँ ये आजकल मुझे क्रेज चढ़ाएगी, आजकल मुझे फरीहा परवेज के गाने जो है ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और खास करके वो एक जो मैं आपको ज्यादा सुनाती हूँ समझ गए होंगे।

खत्म हो रही है, यहाँ पर एक और गाना हमारी लिस्ट में है, जरा वो भी हम सुनेंगे. साथ साथ ये गाना होने वाला है जी मास्टर मंजूर की आवाज में. हाँ जी, तो हम ये प्यारा सा गाना एंजॉय करेंगे. और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मुनासिब सी कीमतों में मिल रही है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाने के क्या तरीकेकार हो सकते हैं, वैसे तो कुछ लोगों को लगाने के तरीकेकार भी मालूम नहीं होते हैं, तो लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये होंगे कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से आप जो है ना परचेज कीजिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है. और डी स्किन फेस वॉश जो है ना वो आप परचेज करेंगे उसके बाद, और आप रात के टाइम जो है ना सोने से पहले बस अपने लिए 5-10 मिनट निकाल लीजिए. ये आपकी स्किन केयर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे. जब आप कुछ दिनों के बाद अपने आप को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो हमने 5-10 मिनट अपने लिए निकाले थे ना, ये बड़े फायदेमंद साबित हुए हमें. तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए रात के टाइम, अच्छे से चेहरे को क्लीन किया करें. अगर आप कोई भी नाइट क्रीम नहीं लगा रहे हैं या फिर आप लगा रहे हैं तो फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. अगर आप क्रीम लगाएं ना लगाएं, फेस वॉश आपने लाजमी करना है. फेस वॉश करें सबसे पहले अपने चेहरे पर, ये जो डस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, गंदगी होती है, सारे दिन की जमा हो जाती है आपके चेहरे के अंदर, तो उसको वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो उसको वॉश कीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए, अच्छे से फेस को सुखा लीजिए, फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए. और इस तरह अप्लाई करेंगे कि भाई हल्के हल्के हाथों से लगाएं, और जो क्रीम है ना वो आपके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए. मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि बस ये सही होता है. कुछ चीजें बाकी जो होती ना सही, तो बस उनको बता दिया करेंगे हाँ ये चीज सही है, तो बस ऐसे किया करें. तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप हल्के हल्के हाथों से और नरम नरम हाथों से लगाएंगे सॉफ्टली, क्योंकि कुछ लोग बड़ा हार्ड तरीके से लगाते हैं, मसाज करे होते हैं नाइट क्रीम के ऊपर, तो ये चीज से जरा गुरेज किया करें. इन चीजों से थोड़ा सा जो ना वो पास होकर ना कहो बाबा ये चीज होते हली तव्हांखे नुकसान ईंदव. सो असां चाहियूं था त तव्हां हमेशा जेको पंहिंजी खूबसूरती जो ख़्यालु रखो, ऐं हमेशा तव्हांजी खूबसूरती जेका आहे न उहा सफ़ा ईअं बहितर तरीक़े सां हुजे. तव्हां अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो तो सॉफ्टली कयो, ऐं तव्हांखे रिज़ल्ट मिले उहो अहिड़ो मिले जो तव्हां ॾिसी करे चओ वाह साईं वाह कमाल थी वियो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा बि ॻाल्हि आहे त तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ 2 रातिनि जे इस्तेमाल. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट फार्मुलेशन आहे, त इन जी बि तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांखे रिज़ल्ट मिलंदो अहिड़ो ज़बरदस्त जेको तव्हां सोचींदा आहियो त बाबा हीउ रिज़ल्ट असांखे मिले पर कहिड़ो प्रोडक्ट ॾींदो. त बेशक तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾेई रही आहे उहो रिज़ल्ट जेको तव्हां हमेशा हासिल कंदा आहियो ऐं करणु चाहियो पिया. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मिले भई मर्द मायूं हर कोई इस्तेमाल करे सघे थो, मुनासिब क़ीमत में तव्हांखे मिली रही आहे. तव्हां वञो बाबा परचेस कयो ऐं पंहिंजी खूबसूरती जो थोरो

मालूम हासिल कर खबर न बाबा जी प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों पे छो इस्तेमाल क्यों पा कुछ मू बेचारा इलाही मासूम हूं तो उन्होंने बस जो भी दुकानदार प्रोडक्ट दई छी तो इस्तेमाल कर लगता है अगर यह चीज तवा में भी आए तो बाबा पानी थोड़ी नेचर के चेंज कर यह चीज सफा पान में कड़ी छो तुम दुकानदार के चो बाबा असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण आया आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी ही वेदासी अगर दुकानदार चे तो असा वो प्रोडक्ट को अवेलेबल तो तक नंबर डेई अचो जो नंबर तक बुधाया पे चोस तो भा इन नंबर से राबो करी दुकान से ही प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ जी तट अवेलेबल थी वन असा वठण में आसानी थी वे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो सारा फायदा सारे प्रोग्राम में तक बुधाई आई आया हाँ तुम्हें डिपेंड करे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कदें वा कदें इस्तेमाल कदा डिसूँ था केतरा खूबसूरत थी वा अच्छा कुछ मैसेजेस आन टाइम भी तेजी से गुजरों वे तो और साइमा मीर हमारे साथ मौजूद कहती हैं सुना है कि गरीब के बच्चे वफादार अमीर के बच्चे बेवफा ऐसा भी नहीं होता और कहती अच्छा सिंधी सॉन्ग अच्छा है लेकिन किसी के लिए किसी और को छोड़ना बेवकूफी मानी जाती है सामने वाला चाहे कितना भी डेंजर क्यों ना हो लेकिन हाथ हमेशा ये भी ठीक है जी ये भी ठीक है और ये हमारे साथ मौजूद है कहती योर वॉइस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड योर शो इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिठोरों से दाऊद जमाली हमारे साथ है एंड ओसामा अवान एंड सरवर मीरानी प्लीज प्ले सॉन्ग फॉर जिया सुमरो ओके मैं कोशिश करूंगी टाइम बच गया तो आपके लिए लाजमी आपकी पसंद का जो गाना है ना वो चलाया जाएगा और सागर भाई कहते हैं कि गिफ्ट कयो सागे डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा वटो पांजी वटो मां कहें कहें कि गिफ्ट कंदस पान वटो रेशम गली बनयो ओता मालू मात करायो आई उन खा अलावा जेकी जेकी असा मानो असा के बुदन पया पाने करीबी जनरल स्टोर्स ते हल्या वनो पांजे मार्केट हल्या वनो ओता मालू मात वटो तवा के हर जगह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिली वेन चाचा कहते हैं सिंधी तो ढी प्यारी है बस डिसो डिसो तारी भी निकंदा के वाला फरवा गुल हमारे साथ ही फरवा तांजो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया हिदायतुल्लाह कहते हैं एक ये सिंगर दो दफा क्यों नहीं नहीं एक ही सिंगर एक मरतबा चला है और इन खा अलावा रमजान भाई आपने भी गाने की फरमाइश कर दी है ठीक है जी लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो बताए या नहीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर पर मिल रही है या फिर नहीं अच्छा चाचा तवां जो जेको गानो नो पंज बजे वाले प्रोग्राम में बुधंदा सी ठीक है और जी सालार सिकंदर हमारे साथ मौजूद है सालार सिकंदर जी आपको वेलकम

हांजी हिकड़ो भेड़ो अचो असि सगल है डाडो वीआईपी गानो सा बुधू पया और यहां पर गुलाम हुसैन अबड़ो लिसनर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जी आपको वेलकम कहा जाता है थैंक यू वेरी मच और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही होगी अगर नहीं मिल रही तो आप लाजमी मालूमात लीजिएगा फिर परचेज करके मुझे बताइएगा कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा माहिर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया सर थैंक यू आप हमारे साथ पूरा प्रोग्राम सुनते हैं जी थैंक यू सो मच इसके लिए।

कैसी नाराजगी की बतानी पड़ रही है कि हाँ भाई मारो ठल आया चमुखे मनाए. ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. बिल्कुल जी, आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं. फरवा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, और मुलाजिम भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम दादी भलिया है. बिल्कुल जी चाचो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर दुआ है. अखलाक भाई कहते हैं सिदरा तमाम वनो था आने हाल लगी तय तो मुखियाने वन गुर्जे. फहीम कहते हैं भाऊ मेरी सिंधी वाली पोएट्री आपने गलत रीड की. भाई सिंधी मेरी जरा वीक है तो इसके ऊपर ये क्यों और कैसे ये मत बोला करें. और उन खां अलावा अज जो सवाल हुयो त उन खां अलावा जो भी तमाम मानू मुखे यो जवाब दिनो त असा एक्सपायरिंग डेट जका उहा चेक कना है त ई डाढा मानू भला हुंदा तव अगर ता कोई भी प्रोडक्ट परचेस कयो था ना त बियो सब चीजों त ता बाद में चेक कयो पर जका एक्सपायरिंग डेट आ ना उन के सब खां पहिना चेक लाजमी करे वठंदा कर त कई मरतबा ई थिनो तवा के जको प्रोडक्ट आ ना वो एड़ो मिली वेंदो आहे जको एक्सपायर्ड हुंदो आहे आ जदी ता उन के इस्तेमाल कना जदी गोठाणा वेचारा कुछ मासूम हुंदा है त जदी तवा कोई भी प्रोडक्ट वठो त उन जी एक्सपायरिंग जका डेट आ ना उहा लाजमी चेक कना कयो. वह डेट डिसी पोए तुम्हारा प्रोडक्ट परचेज कर इस्तेमाल करके खूबसूरती मिले सफा बेहतर तरीके से. हाँ इजाजत दियो मुखे वही तुम ज्वाइन करना सी पंजी बजे वाली प्रोग्राम में सो पांजो ओ हिडो सरो ख्याल रखो कि का गलती थी तो माजरत क्यों था जिनो फीडबैक रही आपको गानड़ो चानड़ो रही तो माजरत क्यों था बाबा मोकलानी ना है. सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर.
1: It's 3 PM. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.
3: तहजीब और सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज. GAFM 88 की आवाज.
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

में बहरी जोन काम करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल मुसरदाई चयो आहे त अमेरिका मुआशी नाकाबंदी जारी रखी त रेड सी खां ईरानी समुंड ताईं अमेरिकी नाकाबंदीअ ताईं बहरी जोन क़ाइम कयो वेंदो। ईरान जंग खटींदे ई तेल सस्तो थी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां जंग खटण बाद तेल जूं क़ीमतूं तेज़ीअ सां घटिजंदियूं। अमेरिका में फी गैलन तेल $2 ताईं बि थी सघे थो। ईरान खे कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल करण न ॾिना वेंदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई जे ऐलानियल 27 जा माण्हू बि शरीक थिया। 16 सालनि खां हलंदड़ तकरार दौरान मजमूई तौर ते 4 ॼणा मारिजी विया हुआ।

0: कैची मारण लाइ वयल नौजवान डोरे में ॿुॾी वियो। गोला जारी, पुलिस हिकु ॼणे खे हिरासत में वठी छॾियो। नूर केटी थाणे जी हद में घोट भाई खान वटि SM बचाव बंधन तां पेर तिरकण सबबि नौजवान राजा ॿुॾी वियो। पुलिस रफ़ी खे तहवील में वठी जांच शुरू करे छॾी। भाऊ कोसो विझण जा तल तयार बंधन गोदो वाह वटि क़ाइम पुलिस पिकेट ड्राए छॾी। हाणे जा तल तयार बंधन राति जे वक़्तु पुलिस पिकेट खे ड्राए पट करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदारनि जी सुञाणप ऐं गिरफ़्तारी लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। मेयर जे बिलावल कॉलोनी, हमदम कॉलोनी ऐं एजाज कॉलोनी जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतुनि जे खोट खिलाफ़ मार्च। मेयर जे बिलावल कॉलोनी, हमदम कॉलोनी ऐं एजाज कॉलोनी जे रहवासियुनि बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट खिलाफ़ एहतजाज कयो। मुज़ाहिरनि पारां टिनी कॉलोनियुनि खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सखर सिंध का राज दुलारा शहर,
4: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर।
3: सखर के हर अंदाज से बसी आवाज GA सखर FM 88, सखर की आवाज।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: पंहिंजे शहर सखर ऐं रोड़ी में
6: जिना हस्पताल कराचीअ जो तरबियती आफ़्ताब
5: ऐं TB हस्पताल खैरपुर जो मशहूर
6: एलर्जी, दमो, TB, फिफड़नि ऐं छातीअ जे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर
5: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो,
6: चेस्ट स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट,
5: माहिर अमराज,
6: फिफड़नि में ॻारो, फिफड़नि में पाणी ऐं फिफड़नि में हवा भरजण,
5: TB नंबरनि में छातीअ जी बीमारी,
6: मोटापे जे करे निंड ऐं साह में तकलीफ़,
5: सहको, दमो, सिगरेट नोशी खां निजात,
6: बार बार नज़लो, ज़ुकाम, पुराणी खंघ
5: ऐं बलगम में रत अचण वगैरह।
6: क्लिनिक टाइमिंग हर छंछर खां अरबा ताईं शाम 4 खां 7 वगे ताईं। डॉक्टर शाहिद मीरानी हॉस्पिटल, तीर चौक, बैराज रोड, सखर, हेरा हस्पताल जे वेझो।
5: हर खमीस ऐं आचर ते
6: इंडस हस्पताल घोटकी में
5: मंझंदि 1 खां शाम 6 वगे ताईं।
6: इन खां अलावा रोज़ानो सुबुह जो 9 वगे खां मंझंदि 1 वगे ताईं
5: तालका हस्पताल रोड़ीअ में मरीज़नि जो मुफ़्त मुआइनो कंदा
6: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो।
5: राब्ते जे लाइ

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: डी एफ एम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: जो रेजोल्यूशन लाए हैं हमारे फारूक साहब, मैं उसको
4: एमकेएम जो सिंधु देश खिलाफ ठहराव एजेंडा में शामिल न करने खिलाफ सिंध असेंबली में एहतजाज। स्पीकर जी डाइस जो घेराव। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, ताहा अहमद ए बया मुतदा मेंबर स्पीकर जी डाइस साडो गढ़ थी व्या। सख्त नारेबाजी। एमकेएम मेंबर्स पारा सिंधु देश नामंजूर, स्पीकर गर्दी नामंजूर ए धरती माओ पाकिस्तान जा नारा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी है वे वजीर पारा धड़को मिलने बाद स्पीकर बेधुर थी वो है। अपोजिशन जो बिजनेस न पे हलए वे, अपोजिशन जो आवाज़ दबाए पे वे, ये न हलो। ॾिसूं त हाणे ऐवान कीअं था हलाइनि। वॾेरा सिंध असेंबली खे पंहिंजी उताक सम्झी हलाए रहिया आहिनि। वाज़े कयो त सिंधु देश जा हामी आहियो या मुख़ालिफ़। इजलास सुभाणे 2 वॻे ताईं मुलतवी।

0: વેચાવ પરમે શિક્તાણ આલમી માર્કેટમાં તેલની કિંમત એક બેરોબેર 100 ડોલર ફી બેરલ તાઈ પહોંચી ગયું. બ્રેન્ડ ક્રૂડ ઓઇલ જી કિંમત 99 ડોલર થઈ ગઈ. WTI ક્રૂડ ઓઇલ જી કિંમત 96 ડોલર ફી બેરલ થઈ ગઈ. બોર્બન ક્રૂડ ઓઇલ જી કિંમત 114 ડોલર ફી બેરલ તાઈ પહોંચી ગઈ. અમેરિકામાં ડીઝલ જી કિંમત તારીખ જે બુલંદતરીન સતહ તે પહોંચી ગઈ. ટ્રમ્પ ચવાય તો ઈરાન કાં જંગ ખટણ બાદ તેલ જી કિંમતું ઘટતી વેંદ્યું. પેટ્રોલ 12 રૂપિયા 90 પૈસા મહંગો. 9 અગોટ 358 રૂપિયા 77 પૈસા ફી લીટર મુકરર. નોટિફિકેશન જારી. ડીઝલ જગ મેં 2 રૂપિયા 72 પૈસા લીટર વાત કઈ ગઈ. 9 અગોટ 381 રૂપિયા 77 પૈસા ફી લીટર મુકરર. હાલ પાકિસ્તાન ગુડ્ઝ ટ્રાન્સપોર્ટર્સે તાત્પરા 5% ભાડા વધારણ જો એલાન. अवाम के सिस्टम रीसेट है सूबन के विरण में उलझा छो है पोया खा पेट्रोल की कीमत में 13 रुपया फी लीटर बधाए छो. NP के सरबराह एमल वली खान जो ट्वीट. एमल वली खान है मुस्लिम लीग नून वारा खुश है आशीर्वाद हासिल है अवाम जो फिक्र ना है. नून लीग के यकीन है इंदड़ इलेक्शन में अवाम न आकाओं की मर्जी कामयाब कराइंदी. केर वड़ी मियाँ साहब के खबर डे तो अवाम जो रत चूसे वोट के जबरदस्त तरीके से इज्जत डी पी वे.
1: ये लेवी मजदूर तालिबे इल्म बाइक राइडर फूड डिलीवरी और जो टैक्स नेट में मौजूद नहीं है उनसे भी वसूल की जा रही है इसलिए इसको फौरी खत्म करने का मुतालबा करता हूँ.
2: वो यही चाह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट अप्रोच करे, सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच करे कि ये जो उन्होंने बात कही है उस पर अमल दरामद किया जाए.
1: तो सिफारिश हम कर देते हैं लेकिन अमल दरामद यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का.
2: आप इस पे फिर कोई अपोज नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी एक्सेप्ट कर. जी बोले बोले.
1: यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अवाम वफाक से मुतालबा करे कि ये अवामी एक वो है, मुतालबा और कुछ नहीं है.
2: फारूक साहब वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे.
1: ठीक है.
2: नाउ आई पुट द रेजोल्यूशन टू द हाउस. दोज हु आर फॉर द रेजोल्यूशन में से आइज. दोज हु आर अगेंस्ट इट में से नो. द आइज हैव इट, द आइज हैव इट एंड द रेजोल्यूशन इज पास्ड.
0: सिंध असेंबली में जमायत इस्लामी जो पेट्रोलियम लेवी खिलाफ पेश कल ठहराव अक्सरियत राय से मंजूर. सिंध सरकार वफाकी हुकूमत से राबतो करे पेट्रोलियम लेवी वापस वठण जो मुतालबो करे. मोहम्मद फारूक पारा पेश कल ठहराव. सूबाई वजीर ज़ियाल अंजार पारा ठहराव की मुखालफत न करण बाद ऐवान पारा पेट्रोलियम लेवी खिलाफ ठहराव मंजूर किया.

0: सिंध असेंबली में क्रिश्चन फैमिली बिल पेश थियण बाद बस लाइ मंज़ूर। बिल बस लाइ स्टैंडिंग कमेटी हवाले कयो वियो। शादी करण लाइ घोट ऐं कुंवार ॿिन्ही जो मसीह हुजणु लाज़मी हूंदो। शादी जी उमिरि 18 साल हूंदी। बिल डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी पारां पेश कयो वियो। जमायत इस्लामी जे मोहम्मद फारूक बिल जी कापी घुरी वरिती।
1: पहले जो हमारे सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पर आए थे सर, उस सिलसिले में SHO लियाकताबाद शौकत अवान और SHO सोल्जर बाजार वकार अजीम सर, इनको फौरन मुअत्तल किया जाए। एक तो इन्होंने, हमारी एक PTI की खातून थी, उनके गले से इन्होंने दुपट्टा और उसके साथ मफलर खींचा था, और उसके साथ साथ ये मैं बात कर रहा हूँ वकार अजीम की, SHO सोल्जर बाजार और SHO शौकत अवान, इन्होंने हमारे दो कारकुनों, एक की टांग तोड़ी है जिसका जो जो नाम है वो वकील आवान है और दूसरा जो है राव आजम सर। इतना तशद्दुद किया है इन्होंने, कोई इंडिया से तो कोई BJP की पार्टी नहीं आ रही थी, PTI वालों का सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल था, और जिस तरीके से आपकी पुलिस ने बर्बरियत की हमारे वर्करों पे, हमारे खवातीन का दुपट्टा इन्होंने छीना, ये कहाँ होता है सर। ये जितने आपके SSP थे, जितने DIG थे और IG है, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, खुदा की कसम जितना आपने हमारी पार्टी पे वर्करों पे जुल्म किया है, सूद समेत अगर नहीं लिया मेरा नाम भी सजा तुमरो नहीं है।
0: सोहेल अफरीदी जे सिंध यात्रा दौरान PTI कारकुनन ते तशद्दुद ऐं औरत जो रओ लाहींदड़ SHO खे हटायो। सजाद सुमरो जो मुतालबो सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सजाद सुमरो चयो त पुलिस हिकु कारकुन जी जंग बनी छॾी। ही BJP कारकुन हुआ शाह जो सिंध पुलिस अहिड़ो तशद्दुद कयो। तशद्दुद कंदड़ सिंध पुलिस जे आफ़िसरनि खे कसम खणी चवां थो त हुननि खां व्याज सूदो हिसाबु वठंदासीं। मीर रज़ा केस में जुडिशियल कमीशन घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार खे तलब करे वरितो। जुडिशियल कमीशन एडवोकेट जनरल सिंध जे एतिराज़ खे कार्रवाई में मुदाख़लत करार ॾेई छॾियो। जस्टिस उमर सियाल चयो आहे त जिबरान नासिर वारसन जो वकील आहे, सवाल करे सघे थो। एडवोकेट जनरल सिंध चयो त सवाल जवाबु करण जो अख़्तियार रुॻो कमीशन खे आहे। वकील बार बार सवाल करे रहियो आहे। जस्टिस उमर सियाल एडवोकेट जनरल ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त अव्हां कमीशन जी कार्रवाई में मुदाख़लत करे रहिया आहियो। जस्टिस उमर सियाल घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार खे तलबी नोटिस जारी कंदे कार्रवाई मुलतवी करे छॾी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमया बयान रिकॉर्ड कराईंदे चयो त AIG कराची आज़ाद खान, SSP ज़ुबैर नज़ीर ऐं समील असमरो सां केस बाबति ॻाल्हि ॿोल थींदी रही। AIG कराची जी धीउ मूं वटि आई हुई, उन बाद AIG फोन आयो। मीर रज़ा केस बाबति ॻाल्हि ॿोल थी। AIG चयो त सिधो साधो आपघात जो केस आहे। मूं माज़रत कई त मूंखे ईअं नथो लॻे। जांच आफ़िसर वधीक अहम दस्तावेज़ जुडिशियल कमीशन वटि जमा कराए छॾिया। जांच आफ़िसर मीर रज़ा जे पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत स्मार्ट वॉच, मोबाइल ऐं ॿियूं शयूं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बि जुडिशियल कमीशन में जमा कराए छॾियूं। KMC हेड ऑफिस में बाहि लॻी वई। मेयर जी ऑफिस अंदरि रखियल फर्नीचर ऐं ॿियो सामान सड़ी वियो। फायर ब्रिगेड अमले बाहि ते ज़ाब्तो आणे वरितो। बाहि कीअं लॻी कारण मालूम न थी सघिया। ज़रियन जो चवणु आहे त जांच लाइ कमेटी जोड़ण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। मेयर जी ऑफिस में अहम दस्तावेज़ रिकॉर्ड मौजूदु हो। मेयर मुर्तज़ा वाब चयो आहे त बाहि लॻण बाद हाणे इहो इल्ज़ाम न लॻायो वञे त को रिकॉर्ड सड़ी वियो, बाहि ओचितो ई लॻंदी आहे या लॻाई वेंदी आहे। जांच बाद हक़ीक़त साम्हूं ईंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI जे 27 सेप्टेंबर ते ऐलानियल एहतजाज ख़िलाफ़ ॿुधणी हलाईंदे लार्जर बेंच जोड़ण जो फ़ैसिलो करे वरितो। अटॉर्नी जनरल चइनी सूबनि जे एडवोकेट जनरल ऐं IG पुलिस खे नोटिस जारी। 20 सेप्टेंबर ते ज़ाती हिसत में पेश थियण जो हुकुम। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर मामले खे आइनी बोरान सां तजबी ॾेई छॾी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर 27 सेप्टेंबर ते ऐलानियल एहतजाज ख़िलाफ़ शहरी वकास जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी हलाई। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील अदालत खे KPK जे वॾे वज़ीर जा मुख़्तलिफ़ अख़बारनि में आयल बयान पढ़ी ॿुधाया। वकील चयो त जीअं GSQ ते हमिलो कयो वियो, हाणे अडालत जेल ते हमले जो प्लान आहे। 2024 में हुननि इस्लामाबाद में दाखिल थियण जी कोशिशि कई हुई। रेंजर्स जा 3 हलकर शहीद थी विया हुआ, जंहिं मक़सद लाइ उहो सोचे रहिया आहिनि उहो सज़ा याफ़्ता क़ैदी आहे। हीअ एहतजाज गैरआइनी आहे। अदालत धुरनि खे नोटिस जारी कंदे केस जी ॿुधणी 20 सेप्टेंबर ताईं मुलतवी करे छॾी।

0: यमन यूसन जा सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से हमला, 73 जणा जख्मी थी पाया। अवा के अपडेट कियो यमन के हुसी जमायत अंसारुल्लाह तरफा हमला कया व्या, सऊदी एतिहाद फोर्स चयो। अबा खमीस मशीत निजरान ए जाजान शहरों में इक्तिसादी ठिकाणों के निशानों बनाया व्यो। सऊदी अरब अंसारुल्लाह के हमलों को सख्त जवाब देने का ऐलान कर छो है, वेड में शिदत अची वही है, अरब मीडिया चयो। अवा के अपडेट कियो यमनी हुसिन जा सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से हमला, 73 जणा जख्मी थी पाया। यमन के हुसी जमायत अंसारुल्लाह तरफा हमला कया व्या, सऊदी एतिहाद फोर्स चयो त अवाम खमीस मस्जिद निजरान ए जाजान में शहरी ए इक्तिसादी ठिकाणों के निशानों बनाया व्यो। सऊदी अरब अंसारुल्लाह के हमलों को सख्त जवाब देने का ऐलान कर वेड में शिदत अची वही है, अरब मीडिया जनायो। यमन हुसैन जा सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से हमला, 73 जणा जख्मी थी पाया। अवे अपडेट कियो यमन के हुसी जमायत अंसारुल्लाह तरफा हमला कया व्या, सऊदी एतिहाद फोर्स चयो है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: शहरी कॉल अच्छी चुकी है रिश्नाजी कहें जो आवाज है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम अल्लाह जी बंदी थे गलाया आवाज है सागर सिंधी।
0: तमा अल्लाह जी बंदी था गलाया और ये आवाज कहें जो है
1: सागर सिंधी।
0: ठीक है तमाम घड़ी मेहरबानी भलीकार चवंदासीं ऐं तव्हांजी कोशिश लाइ तव्हांखे सलाम पेश कयूं था। अलाह साईं कंदो तव्हांजो जवाब सही ईंदो, सही अचे थो या ग़लति अचे थो थोरो इंतज़ार कजो। ठीकु आहे, थैंक यू वेरी मच तव्हां कॉल कई, महिरबानी, थैंक यू। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम दा
0: जी, केर साहब ऐं किथां खां? अच्छा, ही आवाज़ कंहिंजो आहे?
2: पहिरीं तव्हां पुछो आहे इहो जवाब न?
0: जी जी, इहो ई जो हले पियो, ॿुधो।
2: भलो शायर सिंधु, भलो फनकार सागर सिंधी जो आहे।
0: पकी ॻाल्हि
2: आहे? पकी ॻाल्हि आहे, सागर सिंधी जो आवाज़
0: आहे। धोको त कोन पियणो? चलो चलो ठीक आहे, कोशिशि कंदासीं, ॾिसंदासीं तव्हांजो जवाब कीअं थो अचे। थैंक यू वेरी मच कुर्बान ख़ासि खेली, महिरबानी तव्हांजो। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जी, केर साहब ऐं किथां खां?
3: मोहम्मद सलीम अहमदाणी लॻ साहिबनि दस्ती ॻोठ राज़ी खान अहमदाणी खां।
0: सलीम अहमदाणी साहब, ही आवाज़ कंहिंजो आहे?
3: हीअ आवाज़ आहे अहमद मुग़ल जो।

0: जी ही आवाज कें जो है सुना तो है तव्हां
1: सागर सिंधी जो है।
0: अच्छा कोशिश पक्की कई अथव या न बेन जो आवाज बुद्धी जवाब पे दियो
1: पक्की।
0: अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच लख थोरा अवां जा। ओके जनाब, त पोई असा हाने वठाऊं पिया एकड़ो ब्रेक, फौजी सुमर जो ट्रैक ताई बुधराए छ बुधाइंदा सी तां आवाज के सुन्या तो या न। पहिरिया चार दुरुस्त जवाब कहंजा हुआ ऐ जेके जेके मेहरबान दुरुस्त जवाब मोकलींदा उनन जा असा 1 2 3 4 नंबर बुधाइंदा सी। ओके जी, फिलहाल फौजी सुमर जो आवाज हनीफ मेमणी जी शायरी आहे। अचो त जी बुधाऊं एकड़ी दर्द जी दां एकड़ो अहड़ो आवाज जेमे दिल शिकारी।

जना वेलकम बलिकार खुशा अमदीद सवाल पुछो सीधे ही आवाज कहन जो है अमा बुदो पे GFM 88 रेडियो नेटवर्क के शो आए सिंधड़ी जी शाम मेजबान अमा जो आरजे यूनिस बकारी मोहब्बतू अमा जे नाम असा पुछो सी ही आवाज कहन जो है जंहिंजे लाइ तव्हां खोड़ सारनि महिरबानी कॉलूं कयूं पर तमामु ख़ुशी थी त हिन में तमामु घणा दुरुस्त जवाब अची चुका। पहिरीं ॿुधायूं त जवाबु जेको तव्हां ॾिनो उहो आहे, ही आवाज़ आहे सागर सिंधी जो। जिन जिन महिरबानी अहमद मुग़ल, सरमन सिंधी ऐं मुख़्तलिफ़ आवाज़नि सां मैच थींदड़ आवाज़ हुजण जे करे माना ॿुधायो, उन्हनि जी कोशिश खे सलाम था पेश कयूं। इन में को बि मसइलो कोन्हे, ही हिकड़ी पंहिंजी म्यूज़िकल गेम आहे, हिन खे केर बि दिलि ते न वठंदो। कोशिश कंदासीं पाण त दुरुस्त जवाब ईंदा त उहे असीं, जेको दुरुस्त हूंदो हुनखे अनाउंस न आहियूं कंदा, ऐं जेको दुरुस्त न हूंदो हुनखे चवंदासीं कोशिश करे। ठीकु आहे, त पोइ असांखे ॿुधायूं त पहिरियां चार जेके दुरुस्त कॉल्स आयूं उन्हनि में पहिरियों नंबर कॉल आई हुई अल्लाह जी बंदी जी। ॿियो नंबर दुरुस्त काल आई कुर्बान अली खासकेली जी।

ટે ધ્રુસ જવાબ આવ્યો રુસ્તમ પમર સાહેબ. અને ચોથો ધ્રુસ જવાબ આવ્યો જંવાર મોહમ્મદ બચલ સંભાણી સાહેબ. इन खां सवाइ खोड़ सारा दुरुस्त जवाब आया ऐं अञा बि कालू अचनि पियूं. कॉल्स महिरबानी करे तॾहिं कयो जॾहिं असां क्वेश्चन पुछूं था, सवाल पुछूं था. तंहिं करे नओं सवाल पुछी था वठूं, पर इन जी कॉल कंदो ब्रेक खां पोइ. फ़िलहाल कॉल न कजो, पहिरीं बि गौर कजो त हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे. हाज़ुर आहे ॿियो सवाल, हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे.

ॿुधाइणो आहे त ही आवाज़ कंहिंजो आहे, नंबर हूंदो 0334352578 पर हुन ते कॉल कंदासीं टीह वारे ब्रेक खां पोइ, यानी 5:30 जो कमर्शियल ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं तव्हांजो कॉल्स वठण शुरू कंदासीं। फ़िलहाल कॉल नथा वठूं छो त कमर्शियल ब्रेक ऐं टाइम चेक हूंदो आहे, मजबूरी आहे त असां टाइम चेक ऐं ब्रेक खे टाइम ते ऑन एयर कयूं। ही सवाल आहे, हिन खे ॿुधंदा था हलजो ऐं यादि कजो, सर्च करे वठो त ही आवाज़ कंहिंजो आहे, ॿुधी वठो गौर सां। मां ब्रेक में वञा पियो, थोरी देरि में वापसि अची बाक़ी तव्हांजो कॉल वठंदसि ऐं ॿुधंदासीं, पुछंदासीं त ही आवाज़ कंहिंजो आहे। पहिरीं ॿुधी वठो गौर सां।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खबर आए ही आवाज किंजो है।
1: दीपा कंवल
0: तो तां कॉल की है तानी मेहरबानी हो, अब कोशिश जारी रख जो। ओके जनाब डिस्कासी हाणी कॉल देकर हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम साईं मोहम्मद सलीम अहमदानी
0: जी। मोहम्मद सलीम अहमदानी साहब ही आवाज किन जो है?
1: आवाज मुझे समझ में अचे पे हो मेरा जमा।
0: मोहम्मद सलीम अहमद

0: मुकेश
1: जी आए वो मेरा चलायो
0: मुकेश कुमार मुकेश कुमार तमा शायद शो में पहली दफा शामिल थे आयो ताके पहली भली कार चाहिए वेठो
1: मेहरबानी
0: थैंक यू मुकेश जवाब ताके बुदाईदासी ओसीडो कजो ठीक है त पहली दफा कॉल कई है अखियन सा भली कार मेहरबानी मेहरबानी थैंक यू वेरी मच डाटा सुठा लिसनर्स सबई तमा भेनरू बाहर डाटा सुठा आयो चकाण जो काफी खिल भोग तासा करनी पोंदी है ता नाराज कोन थिना वडी गाली है नाराज कोन थियो ना बस बियो मुखे छा गुरजे मुखे यो ये त कावड़ न कजो लिसना जी कॉल ते के हेलो अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी कॉल ड्रॉप थी वे शायद कॉल ड्रॉप थी वे पर असा पुछो है ही आवाज के जो है ਦਿਸਣਾ ਜੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਲਾਮ
1: ਅਲੈਕੁਮ
0: ਆਜਿਜ਼ ਅਲਾ ਬਚਾਇ ਨਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਜੂ ਆ ਆਜਿਜ਼ ਅਲਾ ਬਚਾਇ ਨਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਰਪੁਰ ਖਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਯਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੁਹਬਤੂ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰ ਜਵਾਬ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਜੋ तबियत सफा बिल्कुल ठीक ठाक है शाश बशाश है मस्तियन में आयो
1: ओके जी रिपोर्ट है
0: ओके जी रिपोर्ट है बिल्कुल ओके जी रिपोर्ट थैंक यू आमीन आमीन आमीन आमीन मेहरबानी लगे थोड़ा डिसंदासी हाँ कल हेलो अस्सलाम वालेकुम

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा।
1: जवाब
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क की आवाज़।

0: वालेकुम सलाम अदा गोड बाबू वेरो थर पार्कर खान दिलीप कुमार मेघवाड़ गला भी आवाज तफेल संजराणी जो
1: तफेल संजराणी जो अच्छा थैंक यू कोशिश करण ला मेहरबानी मेहरबानी दिलीप कुमार ता जी कोशिश के सलाम ता पेश के पर ही आवाज तफेल साहब जो ना है ना कोशिश के जो ठीक है वालेकुम असलाम केर साहब है किथा का
2: रोड़ी सखरा नजीर अहमद मंगरे
1: नजीर अहमद मंगरे साहब ही आवाज केन जो आ आसिफ सियाल जो तां लिखियो है अच्छा जी तमा कोशिश दाडी जबरदस्त पे करयो अमा के वेलकम था चो भलीकार मेहरबानी मोहब्बत

चेंज हुआ है असर चालियो आवाज आए तव कोशिश सलाम पेश क्यों था मेहरबानी मोहब्बत भली कार साईं।

0: मिठा मेरी हयाती बचा मिठा में मरंदा पिया ऐसी ते केर काल न करे इंतजार कजो छो तो मुके न्यूज ब्रेक का पवरी जी सागे सवाल पूछनो है ऐसी ते कोप दोस्त मेहरबान भेनर भा इन सवाल जो जवाब अने तई न दे सकेन सर्च कयो गोलियो थी सके तो आवाज सुजानी वठो आई जगर सुजानी वठना तो
1: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News. Aap sun.
4: एमकेएम जो सिंधु देश खिलाफ़ ठहराव एजेंडा में शामिल न करण खिलाफ़ सिंध असेंबली में एतजाज स्पीकर जी डाइस जो घेराव अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ताहा अहमद ए बया मुतदा मेंबर स्पीकर जी डाइस साडो गढ़ थी व्या सख्त नारेबाजी एमकेएम मेंबर्स पारा सिंधु देश नामंजूर स्पीकर गर्दी नामंजूर ए धरती माओ पाकिस्तान जा नारा अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी है वे वजीर पारा धड़को मिलने बाद स्पीकर बेधुर थी वो है अपोजिशन जो बिजनेस न पो हलए वे अपोजिशन जो आवाज़ दबाए पे वे ये न हलो ॾिसूं त हाणे ऐवान कीअं था हलाइनि वॾेरा सिंध असेंबली खे पंहिंजी उताक सम्झी हलाए रहिया आहिनि वाज़े कयो त सिंधु देश जा हामी आहियो या मुख़ालिफ़ इजलास सुभाणे 2 वॻे ताईं मुलतवी

0: विचोबर में शिकताण आलमी मार्केट में तेल जी कीमत एक भेरो बेर $100 फी बैरल ताई पहुंची वयूं। ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $99 थी वही। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $96 फी बैरल थी वही। मरबन क्रूड ऑयल की कीमत $114 फी बैरल तक पहुंची वही। अमेरिका में डीजल की कीमत तारीख के बुलंद तरीन सतह से पहुंची वही। ट्रंप चाहा है त ईरान का जंग खटने बाद तेल जो कीमतों घटती वेंदी। पेट्रोल 12.90 रुपया महंगो, नवा गो 358 रुपया 77 पैसा फी लीटर मुकरर, नोटिफिकेशन जारी। डीजल जंग में भी 3.72 रुपया लीटर वाद कई वही। नव अगो 381 रुपया 77 पैसा फी लीटर मुकरर। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एतिहाद पारा 5% भाड़ा वधाने जो ऐलान। अवाम के सिस्टम रीसेट है, सूबन के विरण में उलझा छो है। पोया खां पेट्रोल की कीमत में 13 रुपया फी लीटर बधाए छो। ANP के सरबराह एमल वली खान जो ट्वीट। एमल वली खान है त मुस्लिम लीग नून वारा खुश है त आशीर्वाद हासिल है, अवाम जो फिक्र ना है। नून लीग के यकीन है त इंदड़ इलेक्शन में अवाम न आकाओं की मर्जी कामयाब कराई। केर वड़ी मियाँ साहब के खबर डे त अवाम जो रत चूसे वोट के जबरदस्त तरीके से इज्जत डनी पी वे।
1: ये लेवी मजदूर तालिब इलम बाइक राइडर फूड डिलीवरी और जो टैक्स नेट में मौजूद नहीं है उनसे भी वसूल की जा रही है, इसलिए इसको फौरी खत्म करने का मुतालबा करता हूँ।
2: वो यही चाह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट अप्रोच करे, सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच करे कि ये जो उन्होंने बात कही है उस पर अमल दरामद किया जाए।
1: तो सिफारिश हम कर देते हैं लेकिन अमल दरामद यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का।
2: आप इस पे फिर कोई अपोज नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी एक्सेप्ट कर जी। बोले बोले
1: यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अवाम वफाक से मुतालबा करे कि ये अवामी एक वो है, मुतालबा और कुछ नहीं है।
2: फारूक साहब वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे।
1: ठीक है,
2: नाउ आई पुट द रेजोल्यूशन टू द हाउस, दोज हु आर फॉर द रेजोल्यूशन में से आइज, दोज हु आर अगेंस्ट इट में से नो, द आइज हैव इट, द आइज हैव इट एंड द रेजोल्यूशन इज पास्ड।
0: सिंध असेंबली में जमायत इस्लामी जो पेट्रोलियम लेवी खिलाफ पेश कल ठहराव अक्सरियत राय से मंजूर। सिंध सरकार वफाकी हुकूमत से राबतो करे पेट्रोलियम लेवी वापस वठने जो मुतालबो करे। मोहम्मद फारूक पारा पेश कल ठहराव, सूबाई वजीर ज़ियाल अंजार पारा ठहराव की मुखालफत न करने बाद ऐवान पारा पेट्रोलियम लेवी खिलाफ ठहराव मंजूर किया।

0: सिंध असेंबली में क्रिश्चन फैमिली बिल पेश थियण बाद बस लाइ मंज़ूर। बिल बस लाइ स्टैंडिंग कमेटी हवाले कयो वियो। शादी करण लाइ घोट ऐं कुंवार ॿिन्ही जो मसीह हुजणु लाज़मी हूंदो। शादी जी उमिरि 18 साल हूंदी। बिल डिप्टी स्पीकर नवीद इंथोनी पारां पेश कयो वियो। जमायत इस्लामी जे मोहम्मद फारूक बिल जी कापी घुरी वरिती।
1: पहले जो हमारे सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पर आए थे, सर उस सिलसिले में SHO लियाकताबाद शौकत अवान और SHO सोल्जर बाजार वकार अजीम, सर इनको फौरन मुअत्तल किया जाए। एक तो इन्होंने हमारी एक PTI की खातून थी, उनके गले से इन्होंने दुपट्टा और उसके साथ मफलर खींचा था, और उसके साथ साथ ये मैं बात कर रहा हूँ वकार अजीम की, SHO सोल्जर बाजार और SHO शौकत अवान, इन्होंने हमारे दो कारकुनों एक की टांग तोड़ी है, जिसका जो जो नाम है वो वकील आवान है और दूसरा जो है राव आजम। सर इतना तशद्दुद किया है इन्होंने, कोई इंडिया से तो कोई BJP की पार्टी नहीं आ रही थी, PTI वालों का सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल था, और जिस तरीके से आपकी पुलिस ने बर्बरियत की हमारे वर्करों पे, हमारे खवातीन का दुपट्टा इन्होंने छीना, ये कहाँ होता है सर? ये जितने आपके SSP थे, जितने DIG थे और IG है, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, खुदा की कसम जितना आपने हमारी पार्टी पे वर्करों पे जुल्म किया है, सूद समेत अगर नहीं लिया मेरा नाम भी सजा तुमरो नहीं है।
0: सोहेल अफरीदी जे सिंध यात्रा दौरान PTI कारकुनन ते तशद्दुद ऐं औरत जो रओ लाहींदड़ SHO खे हटायो। सजाद सुमरो जो मुतालबो सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सजाद सुमरो चयो त पुलिस हिकु कारकुन जी जंग बनी छॾी। ही BJP कारकुन हुआ छा जो सिंध पुलिस अहिड़ो तशद्दुद कयो? तशद्दुद कंदड़ सिंध पुलिस जे आफ़िसरनि खे कसम खणी चवां थो त हुननि खां व्याज सूदो हिसाबु वठंदासीं। मीर रज़ा केस में जुडिशियल कमीशन घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार खे तलब करे वरितो। जुडिशियल कमीशन एडवोकेट जनरल सिंध जे एतिराज़ खे कार्रवाई में मुदाखलत करार ॾेई छॾियो। जस्टिस उमर सियाल चयो आहे त जिबरान नासिर वारसन जो वकील आहे, सवाल करे सघे थो। एडवोकेट जनरल सिंध चयो त सवाल जवाब करण जो अख़्तियार रुगो कमीशन खे आहे, वकील बार बार सवाल करे रहियो आहे। जस्टिस उमर सियाल एडवोकेट जनरल ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त अव्हां कमीशन जी कार्रवाई में मुदाखलत करे रहिया आहियो। जस्टिस उमर सियाल घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार खे तलबी नोटिस जारी कंदे कार्रवाई मुलतवी करे छॾी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमया बयान रिकॉर्ड कराईंदे चयो त AIG कराची आज़ाद खान, SSP ज़ुबैर नज़ीर ऐं समील असुमरो सां केस बाबति ॻाल्हि ॿोल थींदी रही। AIG कराची जी धीउ मूं वटि आई हुई, उन बाद AIG फोन आयो। मीर रज़ा केस बाबति ॻाल्हि ॿोल थी। AIG चयो त सिधो साधो आबघात जो केस आहे। मूं माज़रत कई त मूंखे ईअं नथो लॻे। जांच आफ़िसर वधीक अहम दस्तावेज़ जुडिशियल कमीशन वटि जमा कराए छॾिया। जांच आफ़िसर मीर रज़ा जे पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत स्मार्ट वॉच, मोबाइल ऐं ॿियूं शयूं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बि जुडिशियल कमीशन में जमा कराए छॾियूं। KMC हेड ऑफिस में बाहि लॻी वई। मेयर जी ऑफिस अंदरि रखियल फर्नीचर ऐं ॿियो सामान सड़ी वियो। फायर ब्रिगेड अमले बाहि ते ज़ाब्तो आणे वरितो। बाहि कीअं लॻी कारण मालूम न थी सघिया। ज़रियनि जो चवणु आहे त जांच लाइ कमेटी जोड़ण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। मेयर जी ऑफिस में अहम दस्तावेज़ रिकॉर्ड मौजूदु हो। मेयर मुर्तज़ा वाब चयो आहे त बाहि लॻण बाद हाणे इहो इल्ज़ाम न लॻायो वञे त को रिकॉर्ड सड़ी वियो। बाहि ओचितो ई लॻंदी आहे या लॻाई वेंदी आहे। जांच बाद हक़ीक़त साम्हूं ईंदी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट PTI जे 27 सेप्टेंबर ते ऐलानियल एहतजाज ख़िलाफ़ु ॿुधणी हलाईंदे लार्जर बेंच जोड़ण जो फ़ैसिलो करे वरितो। अटॉर्नी जनरल चइनी सूबनि जे एडवोकेट जनरल ऐं IG पुलिस खे नोटिस जारी। 20 सेप्टेंबर ते ज़ाती हैसियत में पेश थियण जो हुकुम। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर मामले खे आइनी बोहरान सां तशबी ॾेई छॾी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर 27 सेप्टेंबर ते ऐलानियल एहतजाज ख़िलाफ़ु शहरी वकास जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी हलाई। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील अदालत खे KPK जे वॾे वज़ीर जा मुख़्तलिफ़ अख़बारनि में आयल बयान पढ़ी ॿुधाया। वकील चयो त जीअं GHQ ते हमिलो कयो वियो, हाणे अडालत जेल ते हमले जो प्लान आहे। 2024 में हुननि इस्लामाबाद में दाखिल थियण जी कोशिशि कई हुई। रेंजर्स जा 3 अलकार शहीद थी विया हुआ, जंहिं मक़सद लाइ उहो सोचे रहिया आहिनि। उहो सज़ा याफ़्ता क़ैदी आहे। हीअ एहतजाज गैरआइनी आहे। अदालत धुरनि खे नोटिस जारी कंदे केस जी ॿुधणी 20 सेप्टेंबर ताईं मुलतवी करे छॾी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.8।

Que vale.

0: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तव्हांजी सोच हा आवाज़ हिकु जहिड़ा अॼुकल्ह आहिनि, ख़बर कोन थी पए। बहरहाल तव्हांजी कोशिश ते तव्हांखे सलाम था पेश कयूं। ही आवाज़ साईं आमिर शाह बादशाह जो न आहे, अञा बि कोशिश कजो। ॾिसंदासीं हाणे कॉल थी करे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केर साहब ऐं किथां खां? हलो, तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो? नवाब मरी साहब, ही आवाज़ कंहिंजो आहे?
1: नवाब मरी काठड़ी खां।
0: मिठा, तव्हां त आहियो पर मूं हिकिड़ो गानो हलायो, हुन जो आवाज़ ॿुधो पिया? तुफ़ेल संजराणी। थैंक यू कोशिश करण लाइ महिरबानी, पर जवाब ग़लति आहे। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरु साहब ऐं किथां खां जी? जी इरशाद साहब, ही आवाज़ कंहिंजो
2: आहे?
0: अच्छा, गानो हले पियो, उहो सुञाणो पिया? फरज़ाना जो। ज़बर, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम था चऊं सर। बिल्कुल फरज़ाना जो आवाज़ आहे। बसि तव्हां इहो ॿुधायो, थी आवाज़ तव्हांखे ॿुधण में अचे पई, मर्द जो आहे या माई जो
2: आहे?
0: माई जो आहे न, पकी ॻाल्हि आहे। वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां?
1: गुलसिंधी। जी गुलसिंधी।
0: ऐं तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो?
1: ममताज़
0: खोसो फलकार खां। थैंक यू ममताज़ खोसा, तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी, कोशिश करण लाइ वॾा वॾा तव्हांजा। असांजे जवाब जो थोरो ओसियड़ो कजो, ठीकु आहे? ओके जनाब, ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केरु साहब ऐं किथां खां? रुस्तम अली पंवर साहब, वेलकम था चऊं सेवण शरीफ़ खां। अव्हां असांखे ॿुधंदा आहियो ऐं ॿुधायो त हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे? नदी मीराणी साहब जो। पकी ॻाल्हि? लॻे थो। चलो जी, कोशिश कजो साईं, अञा बि असांखे इंतज़ारु रहंदो त तव्हां मथां सही सम्झी। थैंक यू वेरी मच मिठा माण्हू, लख तौर महिरबानी। ओके जनाब, हाणे ॾिसंदासीं कॉल केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां? जमशेद चांडियो साहब, ही आवाज़ कंहिंजो
3: आहे?
0: फौज़िया जो। वाह, ज़बरदस्त, थैंक यू सर। सर, बाक़ाइदे सुञाण जी तव्हां कोशिश कई
3: आहे?
0: हा बिल्कुल, सची वची। हा हा, सफ़ा सोराना सची पची, पर इंतज़ार कजो जवाब ॾींदुसि, ठीकु आहे? जी जनाब, असांजी हाणे कॉल ते केरु। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरु साहब ऐं किथां खां? नालो वरी ॿुधायो। टंडे गुलाम अली खां? सद्दाम लिगारी। ही आवाज़ कंहिंजो आहे? तुफ़ेल संजराणी। वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा, माना पक आहे? धुको आयो आहे, ठीकु आहे साईं। अखियुनि ते अखियुनि ते अव्हांजा धुका बि असांजे अखियुनि ते सोणा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हंडस्तासी कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कॉल कटिजी वई आहे। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम बाबू, दरबार खां दिलीप कुमार मेघवाट ॻाल्हाईंदो। इहो आवाज़ जामल अली जो आहे?
0: जामल अली जो। वाह वाह, दिलीप कुमार, पक तो समझी या शक आहे?
4: पक आहे,
0: पूरी पक?
4: पूरी पक।
0: सेव करे छॾियूं? पहिरीं वांगुरु जेकॾहिं तो धोको आयो आहे त पोइ सही कोन्हे जवाब, अञा थोरी ॾींहुं कोशिशि कजांइ। थैंक यू, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरु साहब ऐं किथां खां?
5: गुलाम कादर खोसो, जंड खां खोसो ॻोठ खां।
0: अच्छा गुलाम कादर, ही आवाज़ कंहिंजो
5: आहे?
0: थैंक यू, ख़बर कोन्हे। अच्छा जी, महिरबानी, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम।
0: रेडियो खे परे करियो, रेडियो खे परे करियो भाउ। जी जी, केरु पिया ॻाल्हायो? ही आवाज कैंजो अली अकबर खोसा सरी गुल सिंधी साहब जो पक्की गाला सफा चलो इंतजार का जो मुझे जवाब जो मैं ब्रेक वठी पो वरी जी बुधाया तो ठीक है ओके ओके मौजूद खातिन हजरात शॉर्ट ब्रेक है बस एकड़े सेकंड मिनट मिनट मिनट जो मैं जो वापस दोचा के रहना मत
7: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
8: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी غذائی اجزاء मिले इसके हर दाने में तीनों اجزاء की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
0: अमर सिंध जे सिंध में एक चमकंदड़ सितारो
9: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी
10: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
11: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: वालेकुम अस्सलाम जी, केर साहब हैं किथा का?
1: कई सदाम निगर जो बोला है, तो गोला में जा
0: वरी नालो बुधायो
1: सदाम निगर जो गोला में जा रहा
0: सदाम निगर ही आवाज कें जो है
1: तभी ना गोदी जो है सर
0: पक्की गया ना सदाम लगारी साहब ॾिसो धुको न हणजो माना मैच करे पियो
1: आवाज़
0: चलो मां कंप्यूटर खे रिक्वेस्ट करां कंप्यूटर प्लीज असांजे सदाम लगारी साहब जे हवाले सां सोच ऐं तेसिताईं मां अव्हांखे दोस्तो ॿुधायां थो ब्रेक वठण थो चाहियां शॉर्ट ब्रेक आहे अलाह ताला ज़रदारी जो आवाज़ ॿुधी था वठूं मां वापसि अची इहो वरी गानो प्ले कंदुसि ऐं तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदुसि त इहो आवाज़ कंहिंजो आहे
2: जी अलॻि कंहिंखे कंदो

जी जनाब असां पुछियो सी ही आवाज़ कंहिंजो आहे तमाम नेटवर्क जे तमाम स्टेशननि तां ही आवाज़ प्ले थियो अवां सभिनी जी महिरबानी दुरुस्त जवाब अची विया आहिनि असां कुझु अनाउंस करे वठंदासीं त पहिरियों दुरुस्त जवाब पहिरीं ॿुधाए वठूं त ही आवाज़ आहे जी हा जनाब ही आवाज़ आहे समीना गुडी जो दुरुस्त जेके हूअं त खोड़ सारा जवाब दुरुस्त आया पहिरियों नंबर दुरुस्त जवाब आयो गुलाम रहीम बलोच जो यानी हिन सवाल जो विनर गुलाम रहीम बलोच बे नंबर ते शाहनवाज लाशारी टे नंबर ते दुरुस्त जवाब आयो अरशद मर्री में सद्दाम लगारी जो चौथो नंबर दुरुस्त जवाब बाकी तमाम दोस्तन जा दुरुस्त जवाब हुआ थैंक यू वेरी मच तमाम सबनी बिल्कुल सही जवाब दिनो तमाजी इन मुकाबले में शमूलियत ते मेहरबानी लख तौर तो जनाब उन आगे जो यारो यारी करे अवां जो यूनुस बकारी मोकलाए वंजन माल को दर्दीलो गीत हुंदो बुधी वठो

अॼु शो कीअं लॻो पंहिंजे फीडबैक खां ज़रूरु आगाह कजो। वरी ईंदड़ हफ़्ते मिलंदासीं जेके नेटवर्क शोज़ हूंदा, बाक़ी लोकल शोज़ में त मां तव्हां सां हूंदुसि गॾु गॾु। रोन दिल चरी किथे थी हुनजी सरे। उर्स चांडीअ जे हिन सदाउनि साण अॼु हिकु प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुचे पियो। असांजी सॼी टीम जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे तमामु रेडियो चैनल्स, तमामु स्टेशन्स जे मैनेजर्स, तमामु टेक्निकल टीम ऐं तमामु असांजी जेका टीम आहे जी एफ एम रेडियो सथ जी जेका टीम आहे, सभिनी जो साथ सलामत हूंदो। तव्हां सां गॾु फ़क़ति तव्हां खां यारो यारी मोकिलाए थो यूनुस बकारी। न थो असां त जिते पवंजो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैरी ख़ैर हुजे। उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमनि जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं जो मुक़दर बणजनि। साथ सलामत, सिख सलामत, अलाह निगहबान।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे
3: सऊदी अरब से यमन के हुसी अक्षरती जमायत अंसारुल्ला जा हमला शहरी ए तेल के ठिकाणन के निशानो बनाया बारन औरत सुधो 73 जख्मी हुसैन दावा कई तो यमन की जेल से सऊदी के हमले को जवाब दिनों सऊदी अरब के केतर ही शहर में तेल के ठिकाणन एयरबेस के हदफ बढ़ाया सऊदी अरब पारा हमलों को फैसला तो जवाब दियण जो ला सऊदी परदेही वजारत चो तो बेगुनाह शहर शहरी ठिकाणन हमलों जहा संगीन नतीजा निकरंदा आलमी बिरादरी पाँची जिम्मेवारी पूरी करे गाड़े समुंड में व्यापारी जहाजन से हुसी मलेशिया जहा हमला भी आलमी सामूढ़ी अचुन खतरो सऊदी तवानाई वजारत मूजिब केतर ही हदन से बाह लगण सबब ऑपरेशन रोकणा पाया बे पासे यमन की हुकूमती फोर्सिस हुसैन में वेड़ वधी वही हुकूमती फोर्सिस पारा हुसैन का सना जो कंट्रोल बेरा हासिल करण जो ऐलान

पाकिस्तान जी हुसैन पारां सऊदी शहरनि ऐं तवानाई ठिकाणनि ते हमलनि जी मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त अहिड़ा हमला न रुॻो बेगुनाह इंसानी जाननि लाइ ख़तरो आहिनि पर इलाइक़ई अमुन ऐं सलामती खे बि मुतासिर करे रहिया आहिनि। फिज़ाई हमलनि में केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी थिया। सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तारी ऐं इलाइक़ई सलामती लाइ पंहिंजे मुस्तक़िल हिमायत जारी वरिजायूं था। वज़ीर आज़म पारां सऊदी अरब जी क़यादत ऐं अवाम सां वधीक जो इज़हारु।

ईरान खां जंग खटींदासीं त तेल जा अघु ॿियनि शयुनि खां वधीक तेज़ी सां घटिजी वेंदा। $3 फी बैरल गैलन तेल $2 फी गैलन खां बि घटिजी वेंदो ऐं उहो सभु कुझु घणो तेज़ी सां थींदो, अमरीकी सदर ट्रंप जी दावा। ॿिए पासे अमरीकी परॾेही वज़ारत चयो त ईरान खे हरमोज़लंग में सामूंडी अचवञ मुतासिर करण ऐं आलमी महशत खे यरगमाल पढ़ाइण जी इजाज़त न ॾिनी हूंदी। अमरीका सामूंडी अचवञ आॾो ईरानी डंडकुनि खे रोकण लाइ खिते जे भाईवारनि सां गॾिजी कदम खणी रहियो आहे।

0: जारिया कुवतुनि खे पछताइण ते मजबूर करण ताईं मज़ाहमत जारी रखंदासीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरान सदाई जंगी मुखालफ़त कई आहे ऐं तकरार खां पासो करण खे ज़रूरी सम्झंदो आहे। ईरान अॼु ताईं अगरा ख़िलाफ़ु पंहिंजो दिफ़ा कयो आहे, अॻिते बि ईरान पूरी सघ सां मज़ाहमत जारी रखंदो। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई चयो त असांजे ताज़नि हमलनि सां अमरीका खे वाज़े वार्निंग मिली वई आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराग़ी चयो त ईरान ऐं इलाइक़ाई सलामती जी ख़ुदमुख़्तियारी जी भञकड़ी ते इस्लामी मुल्कनि खे ज़िमेवारानो रदअमल ॾियणु घुरिजे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: ईरान खां जंग खटींदासीं त तेल जा अघ ॿियनि छहनि खां वधीक तेज़ी सां घटिजी वेंदा। $3 फी गैलन तेल, $2 फी गैलन खां बि घटिजी वेंदो ऐं उहो सभु कुझु घणो तेज़ी सां थींदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चवंदा हुआ। ॿिए पासे अमरीकी परे वज़ारत चयो त ईरान खे हुर्मुज़ लंघ में सामूंडी अचवञ मुतासिर करणु ऐं आलमी मईशत खे यरकमाल बणण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। अमरीका सामूंडी अचवञ आॾो ईरानी रंडकुनि खे रोकण लाइ खिते जे भाईवारनि सां गॾिजी कमु खणी रहियो आहे। जारा कुवतुनि खे पछताइण ते मजबूर करण ताईं मसामत जारी रखंदासीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरान सदाई जंग जी मुखालफ़त कई आहे ऐं तकरार खां पासो करण खे ज़रूरी सम्झंदो आहे। ईरान अॼु ताईं अग्रई ख़िलाफ़ु पंहिंजो दिफ़ा कयो आहे। अॻिते बि ईरान पूरी सख़ सां मसामत जारी रखंदो। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई चयो त असांजे ताज़नि हमलनि सां अमरीका खे वाज़ह वार्निंग मिली वई आहे। ईरानी परॾेह वज़ीर अब्बास सिराग़ची चयो त ईरान ऐं इलाइक़ी सलामती जी ख़ुदमुख़्तियारी जी भञकड़ी ते इस्लामी मुल्कनि खे ज़िमेवारानो रदअमल ॾियणु घुरिजे।
1: सर ये जो रेजोल्यूशन लाए हैं हमारे फारूक साहब, मैं उसको
0: एम क्यूम जो सिंधु देश खिलाफ़ ठहराउ एजेंडा में शामिलु न करण ख़िलाफ़ु सिंध असेंबली में एहतजाज। स्पीकर जी डाइस जो घेराउ, अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदी ऐं ॿिया मुतद मेंबर स्पीकर जी डाइस सां गॾु थी विया। स्पीकर गर्दी नामंज़ूर ऐं धरती मां पाकिस्तान जा नारा। अली खुर्शीदी चयो त वॾे वज़ीर पारां दलको मिलण बाद स्पीकर बि दुर थी वियो आहे। अपोज़िशन जो बिज़नेस न पियो हलाए वञे, अपोज़िशन जो आवाज़ु दॿायो पियो वञे, ईअं न हलंदो। ॾिसूं था त हाणे ऐवान कीअं था हलाइनि। वॾेरा सिंध असेंबली खे पंहिंजो ओताक सम्झाए हली रहिया आहिनि। वाज़े कयो त सिंधु देश जा हामी आहियो या मुखालिफ़। सिंध असेंबली में पेट्रोलियम लेवी ख़िलाफ़ु जमायत इस्लाम जो ठहराउ मंज़ूर। पाकिस्तान चइनि सूबनि सां क़ाइमु रहंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो कराची में तकरीब खे ख़िताब। वॾे वज़ीर चयो त पाकिस्तान खे ठाहींदड़ बारी सूबनि में सिंध शामिलु आहे। बलदियाती निज़ाम रुॻो सिंध में मौजूदु आहे, मुल्क में बि ॿियो किथे बि सिंध जहिड़ो लोकल बॉडी सिस्टम न आहे। पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ नवनि सूबनि बाबति सवालनि जा जवाब न ॾिना। लंडन में साफ़ियुनि जे हर हर सवाल करण ते मरियम नवाज़ चयो त सोची सम्झी ॻाल्हि करणी आहे। हींअर फ़िलहाल मोकल ते आहियां, वधीक ॻाल्हि ॿोल घर वञी कंदासीं। ॿियनि सूबनि मां दहशतगर्दी जे ख़तरे बाबति सवाल ते वज़ाहत करण बदिरां मरियम नवाज़ चयो त पंजाब खे नाइली खां ख़तरो आहे। सिंध असेंबली में क्रिश्चन फैमिली लाइ बिल पेश थियण बाद बहस लाइ मंज़ूर। बिल बहस लाइ स्टैंडिंग कमेटी हवाले कयो वियो। शादी करण लाइ घोट ऐं कुंवार ॿिन्ही जो मसीह हुजणु लाज़मी हूंदो। शादी जी उमिरि 18 साल हूंदी। बिल डिप्टी स्पीकर नवेद एंथोनी पारां पेश कयो वियो। जमायत इस्लामी जे मोहम्मद फारूक बिल जी कापी घुरी वरिती।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो GFM 90.8।
1: पहजो शहर पहजो घर सकरण, आई सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8।
1: पहजो शहर पहजो घर सकरण, आई सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो GFM 90.8।
0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पहजो शहर पहजो घर सकरण, आई सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो GFM 90.8।
0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो GFM 90.8।
0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। पाकिस्तान की शान।

0: ये मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडो सुठो
1: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
0: सुनते रहो GFM 90.8।
3: पहजो शहर पहजो घर सकरण, आई सकरण जो आवाज
0: GFM 90.8।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: पहचो शहर पहचो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
2: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News। आप
5: ठठो भरसा पीर जो गोठ वठ लाबारे ते वेल कुटुंब सा खौफनाक हादसो, बिन औरतुन सूदो, छह जणा अजल जो शिकार। पलाल सा भरल ट्रैक्टर ट्राली बिजली जी तारों सा टकराइजी वही। ट्रैक्टर ट्राली ते सवार बिन औरतुन सूदो, छह जणा फोत, दह का वधिक जख्मी। हादसे जो शिकार कुटुंब लाबारो करण का पोए पलाल गोठ खणी वही रहा हुआ। तो हादसे जो इतलाह मिलण बावजूद इंतजामिया जो एम्बुलेंस वक्त सिर न पहतियों। इलाइके वासिन गड़ियल कोशिश लाश ऐं जख्म खे अस्पताल मुंतकिल कयो।

सऊदी अरब ते यमन जे होसे अक्सरियती जमायत अंसारुल्लाह जा हमला शहरी ऐं तेल जे ठिकाणनि खे निशानो बणायो। ॿारनि ऐं औरतुनि सूधो 73 ज़ख़्मी। होसन दावा कई त यमन जे जेल ते सऊदीया जे हमले जो जवाबु ॾिनो। सऊदी अरब जे केतिरनि ई शहरनि में तेल जे ठिकाणनि ऐं एयरबेस खे अदब बणायो। सऊदी अरब पारां हमलनि जो फ़ैसिलाइतो जवाबु ॾियण जो ऐलान। सऊदी परॾेही वज़ारत चयो त बेगुनाह शहरनि ऐं शहरी ठिकाणनि ते हमलनि जा संगीन नतीजा निकिरंदा। आलमी बिरादरी पंहिंजूं ज़िमेवारियूं पूरियूं करे ॻाढ़े समुंड में वापारी जहाज़नि ते होसी मलेशिया जा हमला बि आलमी सामूंडी अच वञ लाइ ख़तरो आहिनि। सऊदी तवानाई वज़ारत मूजिबि केतिरनि ई हंधनि ते बाहि लॻण सबबि ऑपरेशन्स रोकणा पिया। ॿिए पासे यमन जे हुकूमती फोर्सिस ऐं होसिन में वेड़ वधी वई। हुकूमती फोर्सिस पारां होसिन खां सना जो कंट्रोल ॿीहर हासिलु करण जो ऐलान। पाकिस्तान जी होसिन पारां सऊदी शहरनि ऐं तवानाई ठिकाणनि ते हमलनि जी मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त अहिड़ा हमला न रुॻो बेगुनाह इंसानी जाननि लाइ ख़तरो आहिनि पर इलाइक़ी अमन ऐं सलामती खे बि मुतासिर करे रहिया आहिनि। फिज़ाई हमलनि में केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी थिया। सऊदी अरब जे ख़ुदमुख़्तियारी ऐं इलाइक़ी सलामती लाइ पंहिंजे मुस्तक़िल हिमायत वरिजायूं था। वज़ीर आज़म पारां सऊदी अरब जी क़यादत ऐं अवाम सां वधीक जो इज़हार। रूस पारां सऊदी अरब खे विचोबर तकरार में टियाकड़ी जी आश। रूसी परॾेही वज़ीर सरगोई लारूफ सऊदी अरब मुंसिब सां फ़ोन ते ॻाल्हि ॿोल में चयो त रूस विचोबर जी सूरताल संभालण जी कोशिशुनि में दिलचस्पी रखे थो। सऊदी परॾेही वज़ीर फैसल बिन फरहान चयो त सऊदी अरब ऐं रूस में ओपीक प्लस जो ॿतरफ़ो सहकार तेल जी रसद ऐं तलब में तवाज़ुन बरक़रार रखण लाइ मददगार आहे। रूस सां वधीक भाईवारी ऐं सहकार जी ख़्वाहिश रखूं था। ॿिन्ही मुल्कनि पारां ओपीक फ्रेम वर्क तहत ॿतरफ़ो सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़। ईरान खां जंग खटींदासीं त तेल जा अघु ॿियनि शयुनि खां वधीक तेज़ी सां घटिजी वेंदा। $3 फी गैलियन तेल $2 फी गैलियन खां बि घटिजी वेंदो ऐं उहो सभु कुझु घणो तेज़ी सां थींदो, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी दावा। ॿिए पासे अमरीकी परॾेही वज़ारत चयो त ईरान खे हुर्मुस लंघ में सामूंडी अचु वञ मुतासिर करणु ऐं आलमी मईशत खे यरकमाल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। अमरीका सामूंडी अचु वञ आॾो ईरानी रंडकुनि खे रोकण लाइ ख़िते जे भाई वारनि सां गॾिजी क़दम खणी रहियो आहे। जारी हुकूमतुनि खे पछताइण ते मजबूर करण ताईं मज़ामत जारी रखंदासीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरान सदाईं जंग जी मुखालफत कई आहे ऐं तकरार खां पासो करण खे ज़रूरी सम्झंदो आहे। ईरान अॼु ताईं अग्रई ख़िलाफ़ पंहिंजो दिफ़ा कयो आहे, अॻिते बि ईरान पूरी सघ सां मज़ामत जारी रखंदो। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई चयो त असांजे ताज़नि हमलनि सां अमरीका खे वाज़े वार्निंग मिली वई आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो त ईरान ऐं इलाइक़ी सलामती जी ख़ुदमुख़्तियारी जी भञकड़ी ते इस्लामी मुल्कनि खे ज़िमेवारनि रदि अमल ॾियणु घुरिजे।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

पागल थींदो आहे त हुनखे इहे ई कैफ़ियतूं महसूसु थींदियूं आहिनि। तमामु ख़ूबसूरत रोमांटिक जुगलबंदी अदनान समी ख़ान ऐं आशा भोसले जी हुई। पाकिस्तानी फ़िल्म सरगम सैयद नूर जी डायरेक्शन हेठि इहा चई।

सच पुछो त मुखे पाण अवां जी फोन कॉल जो इंतजार रहंदो आहे कॉल सां न हींअर भी कंटिन्यूसली हलनि पियूं लेकिन प्रोग्राम जे पैटर्न फॉर्मेट मूजिब असां अवां सां ॻाल्हि ॿोल बि करणु चाहींदा आहियूं ऐं काफ़ी सारा दोस्त उहे आहिनि जेके मुसलसल प्रोग्राम खे ॿुधी रहिया हूंदा आहिनि ट्रैक्स खे म्यूज़िक खे इंजॉय करे रहिया हूंदा आहिनि असांजी ॻाल्हियूं बि बर्दाश्त करे रहिया हूंदा आहिनि प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में हर कोई दोस्त पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि चवणु चाहींदो आहे ऐं सभिनी जो मैसेज त प्यार ऐं मोहबत जो हूंदो आहे पर तंहिं हूंदे बि असांजे दिलि में किथे न किथे का सनी सुकी का कंहिंजे लाइ का ख़लिश का रंजिश का हूंदी आहे हुनजो सबबु केरु थो बणिजे सदाई असां रुठल हुजूं कॾहिं असां बि कंहिंखे परचाइण जी कोशिशि कयूं कॾहिं को अव्हां खे ऐं रुसण परचण जी इहा रीति पंहिंजनि सां ई हूंदी आहे को रोड वेंदे राह वेंदे रस्ते वेंदड़ खां कॾहिं को रुसंदो बि न आहे।

प्रोग्राम में मुझे वहाँ जो साथ हूँ दो आए नाए सवा नाए का वी वे कर रात ग्यारह बजे तई घे भागे असा उनमें अवाजी फरमाइश भी पूरी करने की कोशिश कदा फोन कॉल्स अटेंड कदा फोन कॉल अटेंड कर डेफिनेटली कॉल कदा असो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488 इनते मैसेज पैगाम वॉइस नोट भी उमाने सोता गो एस एम एस कर 888 1 इन मैसेज भी मोकले सोता।

0: त मोहब्बत जी इब्तिदा या आगाज वथिंदी अखन खाए इंसान जे पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में जो इंपॉर्टेंट हिस्सो हुंदो आहे वो हुंदो आहे इंसान जो चेहरो ए चेहरे में भी जेकर असा वधिक इंपॉर्टेंट शय के गोलन दी कोशिश कंदासे तो वो हुंदी आहे अख ए अख के शारी जे जुबान में दिल जो आईनो सडे वयो आहे असा दिल में छा आहे वो असा कहन जी अख खां अंदाजो लगाए सकंदा जेकने वो डोडा ये फाड़े करे जेकर कें दिसी रहा तो समझंदा यो कावड़ जो इजहार कर रहा है उठल है उन दिल में शायद का नफरत है या कावड़ है जैसे वह निमाणी अख झीरवी अख कर अद बूटे कर कें निगाह अंदाज से अस समझा तो इन निमाणे अंदाज में प्यार भरल है मोहब्बत है पर जैसे उन्हीं अख के अदाउन से हेदे राइट का लेफ्ट यानी कि खबे का सजे सजे का खबे फेराइन है तो उनमें शरारत लिखल होंगी है जैसे निगाहू हेठ कर छबियन तो उनमें हया होंगी है निगाह जैसे वह मथे वेंदी है आसमान नदीद होंगी है तो उनमें दुआ हों
1: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
3: ॾाढो सुठो
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़

0: बावी है 00440 है।
1: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए। हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03009312700।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मोरो नौशहरो, मीरपुर खास, लाड़काना, सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज। GFM 88 नेटवर्क।

0: प्रोग्राम जी गाल सा गद आऊं है अब चौहान आए आवा बुधी रहे हो जी एफएम नेटवर्क जी दोस्तों जहां जो इंतजार हो वो घड़ी अच्छी रही असा अटेंड कंदा से आवा जो कॉल्स कॉलर लाइन पे हैं कॉल अटेंड कंदा से अस्सलाम वालेकुम केर साईं कथा का हेलो अस्सलाम वालेकुम केर पैरा कथा का हेलो अस्सलाम वालेकुम केर साईं कथा का
1: वालेकुम सलाम
0: केर जानी कथा का
1: पंजाब लगा
0: भा
1: पंजाब लगा
0: मा सुनाणा तहां मके सुना तो आ
1: हां प्रोग्राम तो भलो आवा
0: प्रोग्राम भलो आ मेहरबानी अमा पंजो तारीफ कराई दो
1: हां
0: बुधाय भला हेलो क्या बात आ तमाम प्यारो है सुठो मिजाज अंदाज फकत असा के बुधाण लाय कॉल किन त प्रोग्राम भलो आए उम्मीद त सबनी के प्रोग्राम भलो लगदो हुंदो असा बियो कॉलर एकडो आहे लाइन ते असा कॉल अटेंड कंदा सी अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथा गा
1: वालेकुम सलाम सियाद साईं खैरियत आयो
0: अल्लाह जा एहसान दुआऊं जानी पंजो तारीफ करा जो
1: या आप मन दनी विरुद्ध जो गलाया आप के गड़ी केरो काम कुता जी नरेंद्र तक आप साईं
0: हाफिज मोहम्मद अली रंद ताल को गड़ी खैरो का वेलकम प्यारा भली कार प्रोग्राम में प्रोग्राम कैं पो लगे शायरी
1: हां शायरी माता के बिना तो आओ तो के वठन आयो आए तेरी हल तो जिंदगी अली तुजी फाणा तेरी
0: वाह वाह वाह वाह
1: आओ तो के वठन आयो आए तेरी हल तो जिंदगी अली तुजी फाणा तेरी
0: जी
1: आज छो न सुता मिटा मान कूट नहीं रोज धड़का बाबा तू जोतो सही
0: वाह वाह
1: क्या
0: बात हल तो जिंदगी तुझी ठाया
1: आओ तो के वटन आयो आयो ती हल तो जिंदगी अली तुझी ठाया तिरी
0: वाह वाह
1: तू अंगल जो करी सोरिया पूरो करे पर सुपैसन सा दिस मा तो के करे
0: हां
1: बिल्कुल सही तू अंगल जो करी सोजा पूरो करे पर सपोर्ट न मिला दिन तो माथो के भरे पसंद तुझी ते शॉपिंग कराया तेरी हल्क जिंदगी हली तुझी थाया तेरी
0: वाह वाह
1: हां तू के वठन आयो आयो तेरी हल्क जिंदगी हली तुझी थाया तेरी
0: वाह वाह
1: तां जे हाथ जहनी फसा वन तो सही
0: हां
1: तू रकम को सबई दर्द वेंदा लई
0: क्या बात है
1: कांजे आप कहानी कसावन को सही सूर जम को सभी दर्द विंदा लही
0: जी
1: गुड दिन दमेर बते रहा है तेरी हल्क जिंदगी अभी
0: वाह वाह वाह क्या बात है
1: आओ तो के वतन आयो आए तेरी आबद जान हल्क जिंदगी
0: हाय हाय हाय क्या बात है क्या बात है केर रहलंदो साईं एड़ी प्यारी शायरी बुधण का पो एड़ी दिल जी गाल बुधण का पो आसा केर गद रहलंदो वाह वाह लाजवाब
1: ता जो प्रोग्राम पे मिठो आ ता जो गालियो में मिठो ने ता जो आवाज में गोरी ना एड़ो मुठार में मेरी मीटिंग जाय सुती पोस्ट कजे
0: ता पान तमाम प्यारा मानू ए तमा जका शायरी इन में शामिल की है असा प्रोग्राम में चार चंद लगाए छड्या
1: हां मुखे कलाम बुधाय दे रहमान मुगल जो अगर 30 त जीन मारन सा मरण मारन का
0: जी बी लफ्ज बुधाय जो इनजा
1: आ प्रोग्राम में नी गाने जा के शुरू वाला लफ्ज तो उनमें तो के पे मारन सा दे पे मारन सा जीन मारन सा मरण मारन सा रहमान मुगल
0: वाह वाह वाह रहमान मुगल यानी के समझ सुदी
1: प्रोग्राम
0: के वरी क्या क्या बात है को दोस्तन जा नाम शामिल करना चाहिए
1: हा दोस्त आहे मुंहिंजो प्यारो श्री दोस्त गोदापुर में ॿुधंदो आहे नज़ीर लोहर अशिक लोहर
0: जी
1: ऐं ॿिया मुंहिंजा सोट आहिनि सदाम हुसैन ज़िंदा हुनजा नंढड़ा आहिनि ममदास
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल सा गरा हूं है आबिद चौहान आए असा सा कर एक कॉलर लाइन ते मौजूद है कॉल अटेंड करना से प्रोग्राम में कॉल शामिल करना से अस्सलाम वालेकुम केर पेरा के था गा हेलो अस्सलाम वालेकुम केर साईं के था गा

पाकिस्तान जी होसिन पारां सऊदी शहरनि ऐं तवानाई ठिकाणनि ते हमलनि जी मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त अहिड़ा हमला न रुॻो बेगुनाह इंसानी जान लाइ ख़तरो आहे, पर इलाइक़ी अमन ऐं सलामती खे बि मुतासिर करे रहिया आहिनि। फिज़ाई हमला में केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी थिया। सऊदी अरब जे ख़ुदि मुख़्तियारी ऐं इलाइक़ी सलाम लाइ पंहिंजे मुस्तक़िल हिमायत वरिजायूं था। वज़ीर आज़म पारां सऊदी अरब जी क़यादत ऐं अवाम सां वधीक जो इज़हार।

ईरान खां जंग खटींदासीं त तेल जा अघ ॿियनि शयुनि खां वधीक तेज़ी सां घटि। $3 फी गैलन तेल $2 फी गैलन खां बि घटिजी वेंदो ऐं उहो सभु कुझु घणो तेज़ी सां थींदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी दावा ॿिए पासे अमरीकी परॾेही वज़ारत चयो त ईरान खे हुर्मुज़ लंघ में सामूंडी अच वञ मुतासिर करण ऐं आलमी मईशत खे यरकमाल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। अमरीका सामूंडी अच वञ आॾो ईरानी रंडकुनि खे रोकण लाइ खिते जे भाई वारनि सां गॾिजी कदम खणी रहियो आहे।